हैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को

0: बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल्लीरू आकाशवाणी बलांगीर। आज जगतरनाथ महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर पवित्र घोषयात्रा। एही अवसर रे आसंतु शुणिबा विशेष आराधना कार्यक्रम।
1: श्रोता बंधु, रथ यात्रा रो ए पवित्र अवसर

आपण मानंको स्वागत करूछु ए विशेष आराधना कार्यक्रम रे। नीलाचलनाथ नीलाद्री नायक श्री जगन्नाथ तांकर मंदिर श्री मंदिर भोग महाप्रसाद दंड बड़ दंड रथ नंदीघोष यात्रा रथ यात्रा

भविष्यवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा अथ वार्ताः केन्द्रीय

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पापहर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथ यात्रार धारा बरणी शुणा पाई आम राज्यर पुरपल्ली तथा विश्वर कोण अनुकोण से आग्रह सहित अपेक्षा करगणित प्रिय श्रोता बंधु मानू पुणी थे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वर्षकर बहु प्रतीक्षित मुहूर्त एवं उपगत हो सबुआ उत्कंठा उन्मादना एवं उत्साह भूमिरु भूमा पर्यंत समस्ते चलचंचल एक अपूर्व उत्सुकता और भाक्तिक आवेगरे समस्त दृष्टि निबद्ध नीलकंदर उपरे भक्त दर्शन करिवे महाप्रभु को, महाप्रभु दर्शन करिवे भक्त को। आबाल वृद्ध वनिता आज जे भी महाप्रभु दिव्य लीला दर्शन करने बड़ दांडे उपस्थित होती समस्त असामान्य श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव विभोर चलार रहीबार ठेलापेला सहबार पाद छिंडी जीवार वर्षे तिंतार समस्त कष्ट आज तुच्छ हो जीवन रे परम प्राप्तिर बेल जिते आगत से कौ कष्ट अटक भक्त को श्रीक्षेत्र तो स्वाभाविक भाव में प्रबल भक्तिमय परेश थाए सांग को सचराचर विश्व आज भक्तिमय समस्ते जपरि महाप्रभु को धारण करने निज हृदय सिंहासन को सजाइबार लगी महाप्रभु पाखे आम प्रार्थना से विराजंतु प्रत्येक हृदय सिंहासन आउ अल्प समय व्यवधान प्रतीक्षार फल मीठा श्रोता बंधु आमे समस्ते से स्वाद पाइबा जानते श्रोता बंधु विगत 452 वर्षर इतिहास रे विभिन्न कारण 32 थर महाप्रभु रथयात्रा होई पारि नाही किंतु 1736 मसीहा परोटारु ए पर्यंत ए यात्रा निरवच्छिन्न भावरे चलीछि एपरिक ओडियांक भाग्य केते टाण एवं महाप्रभुंकर केते करुणा देखंतु विश्विक महामारी करोनार कोकुआ भय काल रे भी महाप्रभु रथयात्रा करैले। हाँ श्रोता बंधु आपण को आउ गोटे सूचना देवा चाहिए ताहा हला आकाशवाणी 90 वर्ष रे पदार्पण करी आम देश रे उत्सव मनाउछि ए 90 वर्षर महामूल्य उपलब्धि सहित जोड़ी हो जाइछि आकाशवाणी कटक पक्षर आरंभ होइतिबा रथयात्रार धारा बरणीर 79 वर्ष 1948 रु 2026 एटी होची 79तम वर्ष कुआडे अतीत को चाहिले आखि पाऊ नाही भारत स्वाधीन हबार परवर्ष एई धारा विवरणी आरंभ होइतिला आम भितर अनेक सेतेबेले जन्म भी हो नथिबा ये मध्य आकाशवाणी कटक पाई आउ एक महार्ग उपलब्धि जेते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम गणमाध्यम आसंतु आकाशवाणी आकाशवाणी तार विकल्प नाही तार भाष्यकार माने विद्वान रुचिशील संयत एवं श्रोतांक पाखरे प्रतिबद्ध इतिहास और शास्त्रर तथ्य महाप्रभुंकर लीला और महिमा ही आकाशवाणी धारा बरणीर आधार श्रोतांकर आकाशवाणी उपरे थिबा अखंड विश्वास आमर समस्त भाष्यकार मानंकु प्रति पदे पदे सतर्क करुछि संयत करुछि एही दायित्वबोध को धारण करी आमर धारा बरणी प्रदान करिबा पई प्रथम केन्द्र राधावल्लभ मठ उपरे मो सहित उपस्थित अछंती डॉक्टर नरेश चंद्र दास डॉक्टर कल्याणी नंदी एवं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय उपरे आमर द्वितीय केन्द्र उपरे अछंती डॉक्टर हरिहर कानुनगो एवं प्रताप त्रिपाठी आम समस्तंकर महाप्रभु पाखरे प्रार्थना से स्वयं लीलारे आसुछंती आम बाणी रे स्वयं प्रकाशित होंतु आपणंक मन को हृदय को प्रस्तुत करिबा पई किछि भावर कथा आकाशवाणी प्रतिबद्धता तथा कहिबा परे एबे प्रत्यक्ष भावरे देखुथिबा कथा आपणंक कहुछि श्रीक्षेत्र पाणीपाग अत्यंत प्रतिकूल थिला आज सकालु आमे जानंतु आमे सकाळ 5टारे आसी ए प्रथम केन्द्र रे बसीचु धारा विवरणी प्रसारण आरंभ होउछि 7:30 रे आमे

जगदाधार शंख चक्र गदाधर जत पाद पंकजादेव जत नाभि पंकजादेव जातोहं विश्व सृष्टिकृत हे जगदाधार। तेणु महाप्रभु होंगे समग्र जगतर आधार अर्थात भूर्भुव स्व जन तप सत्य जो चतुर्दश भुवन जेते जेते ब्रह्मांड जोठी रही ब्रह्मांड माल माल होई जा लोमकूपे विराजई माल माल ब्रह्मांड जो परम ब्रह्म परमात्मांकर लोमकूपे झुलिकिरी रही से महाप्रभु आज समस्त जगतर आधार सी आज भक्त मान गहन को आसवे भक्त मान सहित आज गोटे महामिलन हब। तेणु बड़दाण्डारे यही महादृश्य को आपण माने समस्ते भावचक्षुरे दर्शन करंतु। मु मोर परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करने डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदय निवेदन करुछी।

0: अमरनाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग

0: 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
2: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देव विदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना

0: टीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कटक शंखक्षेत्र पुरीठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्वप्रसिद्ध पवित्र घोषयात्रार धारा बरणीर सीधा प्रसारण शुणवाई एवं आम आपणु श्रीक्षेत्र को
4: आपण बड़ सुंदर भाव से आपणकर दृष्टि पथारूण जहा जहा हूँ आप संपर्क आमर श्रोता मान सूचना दूसरे आई रथजात्रा कथा आम आलोचना करुचु से गोटे गीत मोर मन पड़ू से गीत हूँ भिकारी बल गाई आमर डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय एक कथाटी उठेले जतेबले दुईट जगह को आम देखु गोटे हूँ रोषघर उपर छात आ गोटे हूँ ये जो आपण सिंह भेट मंडप सिंहद्वार दक्षिण पार्श्वे जो मंडपटी अच्छी से नीलाद्री विजय दिन जो भेट मंडप से मंडप उपरे बहु पारा सेठी उपस्थित अछंती एवं नरेश बाबू कहुतिले जे समग्र विश्व रे जतले लोक माने

0: विशेषज्ञ मानंग ठारु उत्तर पाई परिबे तबे आमर व्हाट्सएप नंबर टिकु सुंदर भाबरे नोट करि नियंतु 8895254200 पुणि थे आमे कहि दउछु जदि आपणक मनरे महाप्रभु श्री विश्व प्रसिद्ध जिए सर्व रहस्यतम पुरुष तमस्य देवना जानती कुत मनुष्य जिते जाणिले विषय आहुरी जानिबाक इच्छा थाए तेब आपण आमर व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करंतु एवं आपणकर प्रश्नर उत्तरटी आपण मध्य सुंदर भाबरे पाई परिबे। वर्तमान मु नै जाउछि आम निकटरे थिबा डॉक्टर शांतन रथ महोदयक निकटकु जे सुंदर भाबरे रथ प्रतिष्ठाकु आपण मानो पाखरे वर्णना करिबे। जय जगन्नाथ। जय
1: धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदय। वर्तमान रथ प्रतिष्ठा र समय, रथ होम सरिला, रथ होम सरिला परे पवित्र जल एवं रथर प्रतिष्ठा पाई जहाँ जहाँ उपकरण उपचार दरकार ताकु धरी मंदिर पुरोहित वर्ग से माने वर्तमान रथ पाख को आसुचंती। वर्तमान बड़ ठाकुर बलभद्र रथ उपर को जिबे तापरे पर्यायक्रमे तीन रथर प्रतिष्ठा करिवे। एवं ए जो रथ प्रतिष्ठा, ए रथर प्रतिष्ठा काहेकि करा जाय आपण एटा भी जानिबा दरकार जे आम शरीर रे जेमती प्राण रहिले ए शरीर चलमान हबो ए रथ मध्य चलिबा पई रथर प्राण दरकार एवं सेइति पई प्राण प्रतिष्ठा करा जाय। तेणु प्राण प्रतिष्ठा करिबा पई ए रथ को जेतेबेले सक्रिय करा दिबो जेतेबेले प्रतिष्ठा हे जिवे रथ एवं ए प्रतिष्ठा पछरे बहुत कथा अछि जे जो सब अपशक्ति माने थिबे से माने अपसरी जिवे, जो माने भूतगण थिबे से माने अपसरी जिवे एवं जेते अपशकुन सबू थिबो से सब अपसारित हबो। ये सबू गुडाक गोटे कार्य द्वारा हुए सेटा होचे रथ प्रतिष्ठा। रथ प्रतिष्ठा होम सरिला मंगल जल से माने धरिकरी आसिले पुरोहित माने वर्तमान रथ प्रतिष्ठा करिबा पई से माने सब परिक्रमा करचंती। वर्तमान नंदी घोष रथ उपर को पुरोहित माने प्रथमे जाउचंती किछि पुरोहित वर्तमान एठी तीन रथरे विभक्त हो गले एवं सेमाने आंब डाल पवित्र जल को पानी छिंचे पानी छिंचला फल रथ गुड़िक पवित्र हबो। हाँ से जो सिंहासन अच्छी से सिंहासन उपरे पवित्र जल पकेबे एवं सेठी प्रतिमा रखिबे। प्रतिमा रखिले सेटा प्राणवंत हला बोली धरा पड़े। तेणु रथ प्राणवंत नहले रथटा को मध्य तो गोटे जीवंत विग्रह भाव में धारण कराए ना। आपण जानतु गोटे कथा श्रोता बंधु जे रथजात्रा जो होउची एई रथजात्रा रे रथ एवं आमर शरीर ए दीटा जाक एका कथा। वर्तमान आंब डाल वर्तमान पुरोहित माने रथर चारिपटे वर्तमान पवित्र जल को निक्षेप करी ब्राह्मण सेवक माने एमाने सबु रथ को पवित्रित करुचंदे एवं रथ को प्रतिष्ठा करुचंदे एवं एई रथ प्रतिष्ठा हबा द्वारा मुझा कहुतिले आपण को रथ पवित्र हुए एवं रथ प्राणवंत होंती एवं रथ चालन करिबा पई जहां सब शक्ति दरकार से शक्ति सब आरोपित होंती रथ उपरे। तेणु एटा गोटे वर्तमान समय आपण देखंतु 9टा बाजिबा को 10 मिनिट अछि ए रथ प्रतिष्ठा काम सरिलाणी। तेणु 9:30 रु पहुंडी थिला 9:30 रु पहुंडी माने पाखापाखि 40 मिनिट ए रथ प्रतिष्ठा सरीगला परे वर्तमान द्वितीय कार्य होउछि पहुंडी। तेणु पहुंडी पई मध्य प्रस्तुति हो बोली आमर धारणा मुता आपण मानको सूचना दउथिले जे किछि समय आगरु घंटुआ सेवक माने मंदिर भितर को प्रवेश कले या भितर रथ प्रतिष्ठा सरीगला। रथ प्रतिष्ठा सरीगला परे पहुंडी विजय मध्य आरंभ हो जबार यथेष्ट संभावना रहुछि। एवं आमे आपण को जो नीतिकांति विषय कहुछु ए नीतिकांति जानिबा पई सिंहद्वारर दक्षिण भाग रे गोटे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड मंदिर प्रशासन पक्षरु कराई से डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जोटा अच्छी से नीति वर्तमान मंदिर चलती कारण आम तो मंदिर भितर को आईपरुनिम बड़दाणर जो मैंने अच्छे तो जापरि वर्तमान से डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड रे गोपाल बल्लभ सकाल धूप इटा शेष होगला वर्तमान आमको सूचना मिलूँ। तेणु गोपाल बल्लभ आ सकाल धूप इटा शेष होगला महाप्रभु प्रस्तुत होजे पहंडी पाई। तेणु पहंडी पाई आमर समस्त प्रतीक्षा र आ गोटे कथा जे आपण जानंतु जे महाप्रभुंकर रथयात्रा को नहीं करी एबे निकट अतीत रे गोटे विवाद मध्य सृष्टि होती आपण जानी चंदी। ସେ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା

0: भगवान नृसिंहंकु पुरुषोत्तम रूपरे जजाति केसरी ख्रीष्ट नवम शताब्दी में आनी आपणकर जो जनकपुरी रही जन्मस्थान रही लागिकी जो मंदिर अच्छी ताकि नृसिंह मंदिर से नृसिंह मंदिर रे यज्ञ नारायण यज्ञनाथ रु जगन्नाथ होती यज्ञ नृसिंह को आवाहन करते प्रतिष्ठा करते सोमवंशी राजा जजाति केशरी ख्रीष्ट नवम शताब्दी में कारण सी जो नृसिंह को आनी प्रतिष्ठा करते से नृसिंह रूप कौन कोल लक्ष्मी मस्तक अनंत से यज्ञनारायण यज्ञ नृसिंह कालक्रमे जगन्नाथ रे परिणत हो नृसिंह महाप्रभु नामानुसारे ए क्षेत्र ना है पुरुषोत्तम क्षेत्र तापर जजाति केशरी आनी 38 हाथर पटोल जहाँ मादलापांजी बना रही 38 हाथर काठ पटार पोल काठ पटारे निर्मित मंदिर रे जो गुंडीचा मंदिर बोली आम कहे परवर्ती समय ते चुड़ंग समय शहे हाथ उच्चर वर्तमान जो देउल आपण माने देखुं एवं से ही समय पट्टा देउलू पथर देउल पथर पिंडी रे रूपांतरित ये कालक्रम होती तेणु नृसिंह भगवान होती पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम होती रामचंद्र त्रेता युगर एवं द्वापर युगर भावग्राही अंतर्जामी भगवान लीलामय कृष्ण होती पुरुषोत्तम यही तीन देवता पुरुषोत्तम कहा जाए जेहेतु कलीजुगरे जगतनाथ जगन्नाथ अच्छा जहां पाखे जाति बड़ नुहे जगत बड़ से होती जगतनाथ जगन्नाथ एवं जो दशवतार कथा आलोचना करुले नरेश बाबू आपण मैंने शुणुते से दशवतार कहीं परिकल्पना कराला जे प्रत्येक मनीषर दसटा आंगुठी अच्छी पादरे दसटा आंगुठी हाथरे दसटा आंगुठी दशावतार यात्रा ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दी में जयदेव जो उड़िया कवि जयदेव जो गीत गोविंद लिखी से गीत गोविंद दश अवतार बर्णना रही दश अवतार होची श्रेष्ठ अवतार आपण जिते जगन्नाथ श्रीमंदिर प्रभुंकर श्रीमंदिर भितर को पशुं तोरण लक्ष्मी जो अच्छा पाखरे थिले दश अवतार काढ़ी दि जाइए एक कहार तात्पर्य होची ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दी जयदेव तांकर गीत गोविंद जो दशावतार बर्णना कले से चारिड़े भारत सारा विख्यात होगा से दशावतार कौन ना मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्की ये जो दशावतार वर्णना ये चारि जुगरे दशावतार भितर महाप्रभुंकर सृष्टि भितर अनीति अन्याय अधर्म एगुड़िक कौन ताको दूर करने महाप्रभु विभिन्न समय रे विभिन्न रूप रे से माने आसंती ये होची लीला महाप्रभुंकर होची लीला रक्तमांस देहदारी साधारण मनीषर जेतेबेले कर्म बोली आमे कहूचे भगवान लीला ताले मनीष को प्रकार कर्म करिवो ना सत्कर्म करिवो उचित कर्म करिवो उपयुक्त कर्म करिवो सही कर्म करिवा पाई ए संसार को आसीची सही पे आमे कहूचे काई की आसीचु मन किसने बा पाई रे आसीचु लंगला तू जीव शून्य होई रे भाई जाको मुकुला तू बंध केते बांधुरे आपे मले जुग जाए पर लागी कांदुरे माटी घट पंजुरी पाड़ सुना सुआ रे ओठा काठी लगाई भाव विनोदिया रे आज भक्त भगवान को भितरे से भाव डोरी को भाव डोरी रे बांधि देई ओठा काठी रे लागी लगे देई सुंदर लगे देई से कालिया शांत कला ठाकुर जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभु आउ अल्प समय पर आपण आसीजे सुसज्जित तीन रथ को यही पवित्र विश्व प्रसिद्ध रथयात्रार धारा विवरणी प्रदान करने मो अनुज आमर प्रताप त्रिपाठी महोदय को निवेदन करुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: से कंबुकट के राजा प्रभु जगन्नाथ चारि बर्णे चौ वर्ग देवाकु समर्थ श्रीवत्स खंडशाल उपरे नीलचक्रर अग्रभागरे पतित पावन बाना एते पुलकित भावरे उड्डीयमान अछंती सेही अनुसारे आमर बाम पार्श्वरे अर्थात श्री नहर सम्मुख भागरे भक्तमानंकर कालक्रमे एते गहळी बढ़ी जाइछि से माने महाप्रभुंकर पहंडीर से विरक्त

0: बाजिबा पूर्वरु ऊर्ध्वबाहु होइ जेउ परि भाबरे जय जगन्नाथ ध्वनि प्रदान करुछन्ति समूह ध्वनि एही होउछि जगन्नाथ महाप्रभुंक प्रति ये जातिर अर्घ्य दान महाप्रभुंक पाखरे समर्पित हेबा पई प्रतिकूल पागरे से माने घर छाड़ी समस्ते भूली जाइछन्ति निजर निजर जेउ शारीरिक अवस्था को भूली जाइछन्ति एवं बड़दांदरे दीर्घ समय अर्थात अति प्रत्युषरु से माने ठिया हो रही गहलीर बढ़ी थिबार जो परिवेश श्रोता बंधु आपण माने अनुभव करुथिबे कौन हेबाकु जाउछि आगामी कार्यक्रम बा जो पहंडीर जो से शुभ मुहूर्त से शुभ घंट घंटार जो वीर काहालीर जो ध्वनि पखाउजर ध्वनि करतालर ध्वनि विभिन्न मठ मंदिर मठाधीश मानंकर जो चामर आलटर जो व्यजन प्रखा प्रक्षालन करिवे बा महाप्रभु को समर्पित करिवे ये समस्त कथार पूर्वरु एमाने उत्साहित होई पड़ुछंती इति अवसर रे आमर द्वितीय केन्द्र दक्षिण पार्श्वरे जो मेडिकल टी रहिछि स्वास्थ्यगत समस्या को किपर समाधान करा जाई परिबो शताधिक कर्मी माने से माने प्रस्तुत होई निज भितरे अपेक्षा करिछंती जे आमकु केतेबेले सेही दायित्व निर्वाह करबाकु पड़िबो तेणु कहिबाकु गले महाप्रभुंकर रथत्रय प्रतिष्ठा करि फेरि आइछंती श्रोत्रिय आचार्य ब्राह्मण माने एवं जहां ए जो समयर आह्वान अछि महाप्रभुंकर दिव्य पहंडी से ओल्हे आसिबे पतित मानकु उद्धार करिबा पई दुखीर दुख को दूर करिबा पई नथिब कटकणा नथिब बाधा कौनसी बाधा नथिब जेतेबेले देखिबे तांकर प्राणप्रिय ठाकुरंकु आखि पुराई एक समय रे नथिब भितर काठ नथिब बाहर काठ एवं एक समय रे लक्ष लक्ष जनता आउ पुणि आपण माने जो श्रोता बंधु अछन्ति गुणग्राही जगन्नाथ प्रेमी समस्ते एक समय रे महाप्रभुंकर दर्शनर स्पर्श पाउछन्ति ये होउछि बड़दांड को आसीबार अभिप्राय महाप्रभुंकर महाप्रभुंकर जो इच्छा ताहा होउछि तीनोटी लीला महाप्रभु रचना करुछन्ति ऐश्वर्य लीला माधुर्य लीला औदार्य लीला वर्तमान बड़दांड को ओल्हे आसी से प्रमाणित करिवे तुमे मोर मु तुमर आम को कही अलगा करि पारिबे नाही आपण माने जानंती से वचन देथिले राजा इंद्रदुम्न को सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव ब्रवीमिते प्रसाद भंगे तत स्थानम न त्यक्ष्यामि कदाचन तेणु हे राजा इंद्रदुम्न मु श्रीवत्स खंडशाल केबे छाड़ी नाही जदि छाड़ी नाही आज महाप्रभु आपण किपरि आसुछंती तेणु एतिपाई आसुछंती जगेई दे आसिछंती माधवंकु हे माधव तुमे मोर प्रतीक भावरे तुमे मोर प्रतिनिधि भावरे ये श्रीवत्स खंडशाल रहिबो मु पूरा सत्य करिछि मु जदि सत्य को पालन न करिबि ए जगत रे सत्यर गुणग्राही केही हेबे नाही तेणु महाप्रभु माधवंकु रखी से वर्तमान आसी जाउछंती बाहर को देख
1: ये मुदिटी भलो लगुची पत्नी को पसंद आसीबो
2: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ओ डिजाइन भी नुआ
1: डिजाइन नुआ अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धता रा प्रमाण केउठी मिलिबो
2: सचेतन ग्राहक हुअंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
3: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्री मानक सुविधा पई ओडिसा रा विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचल रो घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे यात्री मानक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे
4: ओडिशा रो प्रगति पथर जोड़ी हेउछि विकासर नुआ अध्याय दूरता कमाई गां को गां सह जोड़ुछि सेतु बंधन छात्र छात्रिंक पई प्रतिबंधक साजुनी बढ़िला नई यातायात हेउछि सुगम सुगम ग्राम्य सड़क रे एबे दुआरे पहुंचुछि आंबुलांस गां को बाजार सह जोड़ुछि प्रशस्त सड़क चासीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबु पई खोलुछि नुआ सुजोग पर्यटन स्थली को सुगम करुछि सड़क संजोग बढ़ुछि पर्यटकंक आगमन गां गां रे लंबिछि उन्नत सड़क दृढ़ हेउछि विकासर भित्तिभूमि समृद्ध हेउछि ग्रामीण ओडिशा सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यम रे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदय संकल्प मान

0: माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मार्गदर्शन ओडिशार विकास प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग।
1: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, पुणी प्रथम केन्द्र रु आम आपको धारा बरणी देवा आरंभ करुचु। वर्तमान तीन रथरे ये जो कलश ध्वज बंधा कार्य चली, कोठस्वासिया सेवक मैंने आम आखि आगे तीन रथ उपरे चढ़ी वर्तमान कलश स्थापना करुचंदी, एवं कलश स्थापना सहित तीन रथ उपरे से कलश उपरे महाप्रभुंकर प्रदत्त आज्ञामाळ को मध्य से माने बांधुचंदी। आमे बसिकी ये कथबार्ता हो देखला बेलू आमर आखि लिभी जाऊँ जे कि भाव में कोठस्वासिया सेवक मैने कौ बाटरे रथ तो मंडनी ही जाती, रथ उपरे तो सबु रथ उपरे तो कना छाउणी ही जाइछि, कौ बाटे माने उपरकु गले। प्रकृत रे ए जो रथ निर्माण रो कौशल आपण देखिबे, रथ कळारु जो रथ निर्माण आरंभ हुए ये बड़ विचित्र। आमर प्राचीन शास्त्र माने एते समृद्ध एवं एते निखुण जे रथ को निर्माण करते जो कारीगर माने जो शिल्पीकूल ओडिशार से शिल्पीकूल को धन्य कह से शास्त्र से परंपरा को ए पर्यंत मने रखी ताको पुंखानुपुंख भाव में अध्ययन करी ए पर्यंत ताको प्रयोग करी जो रथ निर्माण करुचंती निखुण भाव में रथ निर्माण होउचि। एवं रथ भीतर बाटे ऊपर कना मंडणी हितवा ता ऊपर तो कोठसिया से माने चढ़ी पारिबेनी, से माने रथ भितरे भितरे गोटे बाट तैयारी होइछि से कलश पाखक जिबा पई रथर सर्वोच्च शिखर रे पहुंची। ए जो तीन कलश से माने बांधुचंती वर्तमान ता पई मध्य रथरे बाट करा हिछि सुंदर भाव रे। आमर आखि लिभि जाउछि, आमे ताकु देखला बेलकु आमकु डर लाडुछि केमिति माने बांधुचंती केमिति एते उपरकु चढुचंती। किंतु आपण आउ गोटे कथा भी जानि थांतु जे चुनरा सेवक माने मध्य जो माने नील चक्र रे नेत बांधती पतित पावन बाना को बांधती से माने मध्य एते विशाल उत्तुंग श्रीमंदिर शिखर को केमिति चढ़ी जाती अनायास रे, इटा आश्चर्य लगे आमको। कारण या पछरे आपण देखिबे जे महाप्रभुंकर सेवा सहित जिते सब सेवक अछंती से सेवक मानंकर सेवा उडाक गोटे विशेष सेवा तापाई तालीम नहले एमती जे कही सही महाप्रभु को पूरा से सेवक मानू एत लोड़ा पड़े। कारण से ही सेवक मान जगार आम जदि अन्य लोक लगे से कमटा करू सेवक मैंने लोड़ा पड़ते ना, कारण से सेवक मैंने आप जानते अनसर समय रे जो दईता मैंने पानु एक दिन पिला से महाप्रभु सेवक भाव में से दिन घोषणा करते। तेणु आपत देखु एक दिन पिला से सेवा करिवार परंपरा से सेवा करिवार कौशल सी जदि न शिखिब ताले से दैतापति हो पार नहीं। दैतापति माने महाप्रभु को जो पहंडी करती सेमिति महा जिते दैतापति पहंडी करती शहे जन होते आम 500 लोक से जगार अन्य बाहर लोक दे से महाप्रभु को पहंडी करें सबुगुड़ गोटे गोटे हूँ विशेष सेवा विशेष विज्ञान विशेष दक्षता विशेष कौशल यहाँ जदि आहरण जड़े कर महाप्रभु को पहंडी करें नेत बांधि पारे चुनरा सेवक नई प्रशिक्षण ना पादिन से सेवा जदि सेखी ने तो नीलचक्र उपर चढ़ी बाना बांधि पारे ना, कोठस्वासिया सेवक मैंने रथ उपर चढ़ी बांधि पारे ना। अवतार शब्दर मर्म कौन यटा किए दे? अविनाश दास अंतरगड़ केन्द्रापड़ दे एवं 10 अवतार माध्यम रे महाप्रभु मानव जाति को कौन शिक्षा दे। आपण देखिबे जे अवतार शब्दर अर्थ होउछि दुईटा शब्द अछि, अवतार को जानिबा को हेले आमे आ गोटे शब्द को मध्य जानिबा को पड़िबो सेटा होउछि अवतारी। तेणु ए जो अवतारी शब्द ए अवतारी होउछि जे सकल अवतार मानंकर जे मूल उच्च जे मूल स्रष्टा जहांक पाखरु अवतार माने जन्म होंते तांको कहंते अवतारी। तेणु आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथ होती परमात्मा परम ब्रह्म सकल अवतार मैंने पाखर जात हाँ पाखे लीन हाँ तेणु सी होती अवतारी। तेणु अवतार को माने अवतार समस्ते जिते सब अवतार हेले मीन कच्छ बराह बामन इत्यादि कल्कि पर्यंत जिते सब अवतार हेले समस्ते महाप्रभु पाखु जात होती। तेणु एटा जो महाप्रभु पाखु जात होती आम जाना जे धर्म संस्थापनार था संभव आम जुगे जुगे बोली भगवान जो कही गीतार तार अर्थ होची जेतेबेले संसार अनाचार बढ़ी जाए जेतेबेले धर्मर संस्थापन करिवार आवश्यक हुए सेतेबेले अवतार माने

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्तंकर दायित्व। सेइथिपाई खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होबा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िए दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो, जेमिति तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोला रे बिक्री होतबा खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होतबा खाद्य, माछी बसुतबा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच होबा परे निज हात को साबुन ने भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रहंतु। अळिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पकई डस्टबिन व्यवहार करंतु। जरूरीकालीन सहायता पाई पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752222175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारीको शक्ति विकसित भारतरे समृद्ध ओडिशा पाई महिला सशक्तिकरण को केन्द्र और राज्य सरकारंक विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरणर जुगांतकारी योजना सुभद्रारे महिलांकु मिलिछि आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनारे योग्य हिताधिकारीकु सहायता। असुविधारे थिबा महिलांकु तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन

0: नंबर 1811 असहाय महिलाओं पर शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम रे गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दिया जाउछि प्राधान्य। प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़ा आम भाषा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशु सर्वांगीन उन्नति पर सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु महाप्रभु पुणी आउथरे समस्तक छत्ता को फुटे दैछन्ति आ भितरे वर्षा बंद हो जाइतिला किंतु वर्तमान वर्षा टिके टिके टिके टिके पुणी पड़िबा आरंभ करिछि किंतु सकाळर वर्षा एबे नाही। वर्षा जदि होउछि आकु मुसलधार वर्षा त आमे कहि परिबु नै किंतु वर्षा होउछि। जो दर्शनार्थी माने बड़दाण्ड रे समवेत हेछन्ति समस्ते वर्तमान पुणी छत्ता फुटे की रखिंट निज मस्तक उपरे सुदर्शन महाप्रभुंकर पहंडी सरी जाइछि मां सुभद्रांकर रथ उपरे से आरूढ़ होइछन्ति। किछि समय पूर्व सुदर्शनक संपर्क में कहुथिले आमर डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदया डॉक्टर हरिहर कानून महोदय ये महाप्रभु सुदर्शनकर संपर्क जो कहुछि सुदर्शन प्रकृत रे इतिहास को जदि आम जा इतिहास को छाड़कर तो आम जगन्नाथ संस्कृति संपर्क में चर्चा करा कहु जो दारू विग्रह शबर मानकर उपासित दारू दारू ब्रह्म रूपातरित तो कौन तफात घटला से मैने शबरी नारायण भाव में पूजा करुले कि नीलमाधव भाव में पूजा करुले पद्धति भिन्न था शबर मानक पद्धति भिन्न था से पद्धति से पूजा करुले आम कौन कलु आम दारू को आणलु शबर मान पाखु से दारूं सहित आम ब्रह्म को जोड़ू ब्रह्म को जोड़ा महाप्रभु आमपाईगले दारू ब्रह्म शबरंर देवता किंतु आर्य मान हाथ में जोबले से पड़े आर्य मान विचार जोबले आरोपित है से आसला दारू ब्रह्म शब्द दारू हूँ शबर शब्द एवं ब्रह्म हूँ आर्य मान वेदांत शब्द वेद शब्द तेणु वेद एवं शबर वैदिक सभ्यता एवं शबर सभ्यता ए उभयर गोटे समन्वय आम देखु श्रीक्षेत्र महाप्रभु क्षेत्र में जो शबर माने पूजा करुले दारू रूप से महाप्रभु को से रूपटी केमिति थिला से रूपटी थिला स्तंभ स्वरूप तेणु कौन सी विग्रह स्वरूप से नाला आम जो स्वरूप में वर्तमान महाप्रभु को देखु जगन्नाथ को देखु बलभद्र को देखु से स्वरूप शबर माने तांको पूजा करुनथिले गोटे काठ गंडी को से माने पूजा करुथिले एवं तांकर पूजा जो होतला तांकर होचे पूजा को जे माने कितुंग बोली कहंती डॉक्टर बेणीमाधव पाढ़ी तांकर दारू देवता ग्रंथ जदि आपण माने पढ़िथिबे जोटि गोटे उत्कृष्ट ग्रंथ ओडिशार जगन्नाथ संस्कृत इतिहास रे गोटे मौलिक गवेषणा प्रस्तुत ग्रंथ से कहिसंती जे शबर मानंकर देवता को से माने कितुंग बोली कहंती एवं तांकर जड़े कितुंग हूँ जगंत कितुंग एवं जगंत देवता से कालक्रमे आर्य मान हाथ में आसी बा आर्य मैने ग्रहण करी से जगन्नाथ रूप दे तेणु मूल जो स्वरूप थिला शबर मान स्तंभ उपासना से स्तंभ उपासना जो जगन्नाथ संस्कृति भितर को आसी आर्य मैने परिकल्पना करते से मूल स्वरूप को रखिंट महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर विग्रह परिकल्पना कर सहित चतुर्थ विग्रह कौन आवश्यकता थिला आवश्यकता थिला ये जे आर्य माने गोटे उदार दृष्टिभंगी नहीं महाप्रभुंकर से मूल स्वरूप को मध्य रत्न सिंहासन उपरे से रखिबा को चाहिचंती तेणु चतुर्था मूर्ति बोली जो आम कहु चतुर्था विग्रह बोली कहु सुदर्शन विग्रह जो अछंती सुदर्शन विग्रह आपण देखिथिबे जो माने जो श्रीक्षेत्र आसीचंती पहंडी देखिचंती बा रत्न सिंहासन उपरे विराजमान करथुवा श्री सुदर्शन को देखिचंती देखिथिबे से माने जे सुदर्शन होचंती गोटे स्तंभ आकृतिर गोटे काठ गंडी काठ गड़ आउ किछि नुह एवं ताकू जेतेबेले दैतापति माने पटुआर रे पहंडी करी आणुचंती तांको मस्तक उपरे तुलसीर गोटे टोपर लगाउचंती जिमिति महाप्रभु को टाइया लगे सुदर्शन महाप्रभु सेमती टाइया तो लगि पारिबो नाही तांकर कलेबर दृष्टि तांकर गोटे अंश रे मस्तक अंश रे गोटे टोपर से माने तुलसीर टोपर तयारी करी लगे करी आणंती तेणु से जो सुदर्शन स्कंद देश रे दैतापति मानकर से बोही करी आणंती से होउचंती जो शबर माने पूजा करुवा स्तंभ देवता से स्तंभ देवतार गोटे

श्री काम पालं भजे। श्री सुदर्शन महाप्रभुंकर पहंडी परे सेना पटा भिड़ा त्रिपुर विजयी जुरद्रु बेसरे पाट रज्जुर आकर्षण रे घंट घंटा काहालीर गुरु गंभीर ध्वनि मध्यरे संचालित चामर सेवारे चंदन कर्पूर अगुरु वर्षण मध्यरे धीर मंथर गतिरे पहंडी विजय करुछंति कामपाल बड़ ठाकुर श्री श्री बलभद्र भगवान। से अच्युताग्रज, से बलदेव, से बलराम, से प्रलम्बघ्न, तालांक, मुसली, हली, रेवती रमण, राम, कामपाल, हलायुध, नीलांबर, रोहिणेय, संकर्षण, शीरपाणी, कालंदी भेदन अटंती, यही परी तांकर अनेक नाम। श्रीमद भागवतरे तांकर रमणीय वर्णना देखिबा को मिले। बलदेवं दिवाहुंच शंख कुंदेन्दु सन्निभं बामे हलायुधधरं मुसलम दक्षिणे करे। तेणु से दक्षिण हस्तरे मुसल धारण करिछंति, बाम हस्तरे हल धारण करिछंति, एवं श्री बलभद्र भगवानकर सी होछंति ज्येष्ठ भ्राता, वर्तमान विजय करुछंति रथ यात्रा रे। आउ अल्प समय परे से रथ पाखरे पहुँचिबे। वर्तमान आमे देखि पारुचु अरुण स्तंभ मझीरे अछंति, एपटरे रथ अछंति, सेपटरे सिंहद्वार गुमुट, या भितरे लोकारण्य, एवं समस्ते सेवा प्रदान करुछंति। महाप्रभुंकर सेवा प्रदान करिबा पाई अनेक चामर सेवक चामर व्यजन करुछंति, एवं बहु संख्यक नृत्यकारी सेमाने मध्य भाव एवं भक्तिर सहित महाप्रभु को आनंद प्रदान करिबा पाई सेमाने मध्य ओडिशार जो स्वतंत्र शैली ओडिसी शैली रे सेमाने मध्य आज तांकर नृत्य प्रदर्शन करुछंति, एवं बलभद्रंक पाखरे निहुचाली होउछंति। तेणु बलभद्र भगवान से वर्तमान धीरे धीरे आगो को अतिक्रम करुछंति, एवं आज सबुठारु गोटे बड़ कथा देखिबा को मिलुछि याको भितरे कौन संपर्क जे आज इंद्र एवं जगत श्री जगन्नाथ महाप्रभु बड़ भाई सान भाई रो संपर्क आज इंद्र जगन्नाथ ठारु जन्म हेतिले मध्य समस्त जगतर सृष्टिकर्ता होती स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु। किंतु ये पुराण मानक जो वर्णना आसे से देखा जाए इंद्र होती बड़ भाई एवं श्री जगन्नाथ होती सान भाई, अर्थात श्री जगन्नाथ को उपेन्द्र बोली कहा जाए। कारण इंद्रंकर माता जे अदिति, से अदिति गर्भरु परवर्ती काल रे महाप्रभु बामन रूप से जन्म ग्रहण करथिले, से तेणु ताकु उपेन्द्र बोली कहा जाए। वर्तमान से ही उपेन्द्र आज आसीबे, सेति पाई इंद्र ताकु दर्शन करिबा को आसुचंति, एवं इंद्र देवता एभली भाव रे दर्शन करुछंति जे ताकु ताको सांगरे ताकर जो सहचर भाव रे जो चारि गोटी मेघ रहिछंति आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर, ये चारि मेघ मध्य इंद्रंक सहित सम्मिलित हो जाइछंति। तेणु आज श्रीक्षेत्र भूई बड़ प्लावित होउछि, आकाशर झरझर है धरी आसुची जो मेघ, तेणु वृष्टि आज प्रबल बेगर होउछि। वर्तमान गोमुट भितरे अछंति शशांक धमल, कामपाल, हलायुध, रेवती रमण, श्री श्री बलभद्र भगवान। आगरे घंटुआ सेवक माने से माने मध्य घंट बादन करुछंति, पाहुंड परे पाहुंड पकई आसुछंति, एवं तांकर मस्तक रे शोभा पाउछि
ତାହିଆ।

0: जर्जरित हो जाए यही ज्ञान आमको दबा पाई कली युगर ठाकुर चतुर्दा विग्रह तीन रथ को धाई दर्शन देवा संगे संगे आमर विचारधारा को आमर चिंताधारा को आमर चेतना को शुद्ध पुत पवित्र करने महाप्रभु यात्रा पतित पावन यात्रा जो मुक्तिकामी पापी पतित मान कथा आलोचना करुले से मुक्तिकामी पतित कौन ना प्रत्येक मनीष चाहे मु आउ पुनर्जन्म ने तेणु पुनर्जन्म रु मुक्ति पाई मोक्ष पाई समस्त धाई आई श्रीक्षेत्र को यही श्रीक्षेत्र परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करने मु बंधु प्रताप त्रिपाठी महोदय को निवेदन करुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
1: नमागई राज्य सुख नमागे मणि माणिक्य नमागे नयन निधि बर कामिनी जहां चरितावली गान।

विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। सिंह केतेबेले कहा माध्यमरे सिंहत्व प्रकाश करे नाही, निजे निजर बलकु पराक्रमकु निजर आयत्तरे निजर कर्म द्वारा से प्रतिपादित करंती, से आह्वान देउचंती सिंह द्वारा आमको सिखेई देउचंती, हे मनीष माने निज कर्म द्वारा बड़ हुओ, अन्य को ईर्षा करी बड़ होबा पई चेष्टा कर नाही, स्वयमेव मृगेन्द्रता। से पवित्र सिंह द्वार देई धर्म द्वार देई अरुण स्तंभ चकड़ा आड़कु मारी आसुछंती मो कला ठाकुर कला बामन। आउ बड़ कथा हेउची रथे तु बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, से रथ उपर जेतेबेले कला बामन आसी उपवेशन करिवे धन्य होइजीव जगत। सेइति पाई तो से माधवंकु श्रीमंदिर से अणसर पिंडी निकटरे बसाई साखी रूपरे रखी सीए पळे आसी बाहरकु। आउ भाई भौणी चक्रराज सुदर्शनंकर पहंडी परे सर्वशेषरे महाप्रभु लीलामय नीलाद्रिश आसुछंती ढळी ढळी। धन्य से रघु अरक्षित, धन्य से राघव दास मठ जो परंपरा आदि सुंदर भाव उज्जीवित, से जो दिन पुरच्छरण करुथिले एही सिंहद्वारे प्रचंड रौद्र प्रखर ताप एवं मध्याह्न समय रे महाप्रभु सही पारे भक्तर कष्ट को तालपत्र छताटे आनी तांको मुंड उपर देखाई देथिले। एवं किए छोट बालक जेतेबेले ध्यान भग्न हला रघु अरक्षितंकर से चाहते जानी पारे ना रात्र जेतेबेले शयन करिसंती स्वप्न रे महाप्रभु हसी हसी कहउचंती मुपरा तुम पाखरे रहीथिली। आउ सेई ऋण को सुझिबा पई से ताहिया मंडणी करुछंती जगत जे पर्यंत थिव महाप्रभुंकर लीला जे पर्यंत रही थिव शाश्वत लीला रे सेई रघु अरक्षितंकर राघव दास मठ प्रदत्त सेई जो जरी जंबुरा कदंब पुष्प सदृश सोलरे तयारी होइतिबा कदंब कढ़ी सेई जो काठी गुड़िक एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर 37 गोटी काठी सेई 37 गोटी काठी रे 37 टी कदंब पुष्प रंगणी जरी जंबुरा चंपा मालती मल्ली आउ सबुठारु उपरे रही अछि दुर्वांकुर। हे श्रोता बंधु से दुर्वांकुर 108 दुबर जो समाहार सी सुंदर भावरे ढली ढली आमको अवगत कराउछि जहां आम पूर्वरु शुणुले तरोरीब सहिष्णुना तृणादपि सुनिचेन से कथा को सी सूचाई देउछि मुसिना पाद तलर दुब थी आज शुद्ध सुआर मते संग्रह करी आनी दयना मली माली मते आनी एई जो टाहिया उपरे एई जो राघव दास मठ पदत्त ए टाहिया उपरे रही मु जगतर सर्वश्रेष्ठ होई जाइछि। वास्तवरे जिए सेवा करे तार जीवन बासी उठे से धन्य होई जाए। एई सेवा को अवलंबन करी आमर बाम पार्श्वरे एभली भावरे भक्त मानंकर भिड़ लागिछि केवल मुंड माळ एते वर्षा हेउथिले मध्य से माने आहत हो जाउचंती स्ट्रेचर रे स्वेच्छासेवी माने तांकु सेवा जोगाउचंती खाली पानी दियो बोली मागुचंती काहेकि ना एते भिड़ आपण माने अनुभव करि पारुथिबे। तेणु वर्षा करी महाप्रभु आज मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन से महाप्रभु आज वर्षा करिबा द्वारा अनेक परिमाण रे जे आहतर पूर्व रथयात्रा मानंकर आमे देखिथाए चलित वर्ष से घटना घटुना केवल वर्षा पाई। तेणु वर्षा जमी श्रीक्षेत्र एक अंग हो जाते वर्षा हेब पूर्वर आपण मैने शुणुले आमर वरिष्ठ घोषक डॉक्टर शांतनु कुमार रथ कहते जे चाष पाई चलित वर्षर जो रही परिवेश कम वर्षा रतीपाई महाप्रभु टे वर्षा को नवेदन कर इंद्र को निर्देश देवेदन नुह निर्देश जे तुम्हें श्रीक्षेत्र बरसी जाओ मो रंग पछे धोई जाओ मो मुहर मो कलार ए जगत प्लावित हो जाओ षोल कलार ए जगत पुण्य हो जाओ। आज से कथा देखा मिलूँ बड़ ठाकुर विराजमान तालध्वज रथरे मझीरे दर्प दलन माँ भगवती कांपिल वासिनी जग जोग माया सुभद्र।

आसीबा टिके विलंब होची काहेके महाप्रभुंकर लीला एते महनीय एते महान तार केते गुडे कारण अछि स्कंद पुराण तार वर्णना दैछंती मु आपनकु गोटी गोटी करी कहि दउची गोटी होची महाप्रभु सकला दारणं सकला पदाम आमर समस्त आपदंकु से धारण करि दियंती धारण माने से चिरी दियंती से सिंहंक भली से विदारण करि दियंती जेते आपदा आमर जीवन रे अछि से आपदर कारण तो तीनोटी आमे आपनकु कहिछु त्रय ताप बोली ताको कहा जाए आदि भौतिक आदि दैविक एवं आध्यात्मिक ए तीनोटी ताप छोड़ा चतुर्थ ताप बोली किछि नाही ए तीन ताप रे आमे समस्त ग्रस्त तेणु ए तीन ताप जेतेबेले आम जीवन रे आपद होइकरि आसंती से आपद को दूर करिबा पय आम भितर शक्ति सामर्थ्यर अभाव देखा दिए सेतेबेले आमे महाप्रभु पाखे प्रणत हो महाप्रभु पाखे शरणापन्न हो शरणापन्न भाव में महाप्रभु आमर सकल आपद को दारण कर दियंती कहुए दारण सकला पदाम मुख्यण मुख्यण सर्व पापानम समस्त पापर मुख्य कर दियंती आम भितर एत पाप अच्छी तार संख्या आम करना तार परिमाण आम कल्पना करना से पापर मुक्ति केमती हवा एवं जन्म जन्मर संस्कार आम जाणिना यही जन्म पूर्व आम के जन्म नहींचे तेणु गीतार भगवान श्रीकृष्ण कही बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तमचा अर्जुन तेणु से ही जन्म गुड़ाक तुमर जो अतीत होते जन्म अतीत करमें जन्म अर्जुन होमें समस्ते गोटे गोटे कुरुक्षेत्र अर्जुन भली केते जन्म अतिक्रम कर जन्म लाभ करते जन्मर संचित पाप आम जीवन में अच्छी से पाप को ख्यालन करने आमर कौन शक्ति अच्छी गोटे जन्म आम ख्यालन करी प्रभुंर कृपा करुणा आम उपर न पड़ तेणु से प्रभुंर से शक्ति अच्छी बड़दाणी में दर्शन करदे से समस्त पापर आमको मोक्ष करदे यो भावना यो कारण गुड़िक स्कंद पुराण निर्देश कर महाप्रभु कहीं महनीय आमपाई महाप्रभु केते प्रणम्य आमपाई कहीं मुख्यण सर्वपापान जोड़िए गला तृतीयटी हूँ भरण सर्वजंतुना आमर समस्त जंतु मानकर जिते जंतु अच्छा कीट ठार आरंभ कर पतंग पर्यंत स्तंभ ठार आरंभ कर ब्रह्म पर्यंत समस्त भरण पोषण करते महाप्रभु आपड़ जानती श्रीक्षेत्र को आसिकी कहार पेट केवल अपोसा रहे ना यार बहु दृष्टांत आप देखिं गीता पंडा उपाख्यान से ही कथा बंधु महांती उपाख्यान से ही कथा ये आसिकी श्रीक्षेत्र को आसब एवं पेटर तार दाना मुठे पड़ब ना रही सीए अनाहारे रोब एक कस्मिन काले घटी ना तेणु जी आम को दाना दे पारे हाथी को दाना दे पारती सकल जंतु को दाना दे पारुड़ी को दाना दे पारे जगतर समस्त जंतु मानकर भरण करती भरण सर्वजंतुनांग कहुए शरण जगतामपी ए समग्र जगतर शरण सीए कारण ए समग्र जगत तांकठारु उत्पन्न हुए एवं तांकठारे विलीन हुए सी होचंति परमात्मा परम पुरुष तेणु वेदांत रे कोण कहूं कहाई जे ए तस्मात आकाश संभूत आकाशात वायु वायुर अग्ने अग्ने राप अद्व्य पृथ्वी पृथिव्यांग औषधय औषधिव्यांग अन्न ये होचि तैतरीय उपनिषद वाक्य तेणु ये प्रभुंर से परमात्मा परम ब्रह्म ठारू आकाश संभूत हो वायु अग्नि ये पंच महाभूत समस्त सृष्टि होती जिते प्रलय काल आसव ये समस्ते पुणी तांकठारे लीन हे तेणु से कहुए जे शरण जगतामपी ए जगतर समस्त शरणर शेष स्थल होती प्रभु महाप्रभु श्री जगन्नाथ दूषण सर्वदुष्कृताम सबु दुष्कृत आमर जिते पाप पंकरे आम लिप्त होके अच्छे सबु दुष्कृत को से महाप्रभु दारण करदे सबु दूषण को नष्ट करदे किसी समय पूर्व डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय कहते आम संसार केमती पतित हो जाचु तेणु कौन कहा जाए ना संसार ना दुख जल दु से गोटे कथा हाँ ना ना जैनोद्रुतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः तेणु जो माने संसार वृक्ष चढ़ी संसार वृक्ष महारूढ़ा पतंती नरकार नवे जैनोद्रुतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः से जगत गुरु श्रीकृष्ण महाप्रभु श्री जगन्नाथ भितरे जो शक्ति सामर्थ्य अच्छी सी आम संसार रे आम जो संसार वृक्ष को चढ़ीकरी आल्ले पारने एवं संसार अर्णवरे आम पड़ जाऊे से आमको रक्षा करने सी गुरु प्रतिम एवं सी आमको से उद्धार करे शोषण सर्वपंका नाम नीलाद्रिशरणम हरि
तेणु सर्वपंक को जिते कलमस जिते पाप पंक लिप्त होकर आम अच्छे से सबू पंक को मध्य से करदे स्कंद पुराण।

0: मुटरे रही कलकी कालिया कानू आउ विलंब कर कहीं की बरस कथरे विजय रथरे बरस के थरे विजय रथरे पतित तारीबा पाई के कालिया कानू आउ विलंब कर कहीं की कालिया कानू आउ विलंब कर
1: ताहिया मध्य नहीं आज प्रभु ताहिया को मध्य मस्तकरो तंकरो उलारी हे जाई छंती काहे की काई जाने आज प्रभु की मान मारी छंती जे मान उदाहरण कर हे तारण से प्रभु काहे की आज आपणकर एभली रूप काहीं की प्रभु देखा आपणकर सही रूप जो रूप देखिबा पाई एति भक्त माने आसी छंती आपणकर रूप लावण्य रे पटांतर नाही चका चका आखी
0: मते से ही रूप देखा हरि मते से ही रूप देखा हरि जय श्री राधे बोली डाके बांसुरी मते से ही रूप देखा हरि मते से ही रूप देखा हरि सिंहद्वार ठारू वर्तमान बड़दांड रे जेते दूर पर्यंत आम आखी पाउची आमे देखिबा को पाउचु समस्ते शत्रुष्ण नयन रे चाहिचंती वर्तमान समस्तंकर धैर्यर बंध मध्य धीरे धीरे भांगिबा को जाउची हे महाप्रभु आपण जदि परीक्षा नेबे आपण जदि परीक्षक हेबे आपण को पाखरे के परीक्षा देव प्रभु तेणु ए भक्त मानंकु आउ कष्ट दियंतु नाही आपण पुरा कहिचंती रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते रथ उपरे वामन रूपी मोते दर्शन कले आउ पुनर्जन्म हब नाही यही आशा टिकक भरोसा टिकक नहींकरी कौ गाँ गंडा कौ सहर बजार कौठु कौठु लोक सबू आसी आपणकर भक्त कौ कोण अनुकोण रे थिले समस्ते आसी आपण को टिके आखि पूरे रथ उपरे दर्शन करिवे किंतु रथ सेमिति उन्मुक्त अछि रथ चाहिकरी बसेछि प्रभु आपण समस्तंकर गोटिए कथा प्रभु आउ अभिमान करंतु नाही प्रभु आउ अभिमान करंतु नाही आउ आपण अभिमान करिवे आउ किसी समय गले माँ अभिमान करिवे आउ कौन ये समस्त अभिमान के भांगिब तेणु आमे मात्र आपणकर अनुगत आपण आपण जहाँ करिवे सेथिरे आमर सम्मति यदि आपण चाहूचंती ना आउ किसी समय अपेक्षा कर समस्ते अपेक्षा करिवे किंतु प्रभु आउ समस्त को अपेक्षा करिवा को नदे वर्तमान मु देखिबा को पाउची जे समस्ते बोधे चिंताग्रस्त हे पड़िलेनी कारण कहारी मनरे आउ सराग नाही काही की महाप्रभु अभिमान कले एवं काही की गुमुट भितरे रहीगले पतित पावन पाखरे रहीगले पतित पावन कौन ताकू कौन किसी कहिले कि पतित पावन किसी कहउचंती कि तुम्हें देख मो प्रति कौन अन्याय होउची कि कौन होउची कौन दी जनक भितरे कथाबार्ता चली तेणु वर्तमान जना पड़ुची महाप्रभु आगे आसुथिले आमे जानिचु ए पर्यंत जेते रहिची इतिहास बा किंवदंती महाप्रभु रथ को आसिकिरी रथ को अटकांती एवं महाप्रभु रथ पार्श्वरे चारमाळ को उठांती नहीं जहाँ शांतनुसार कहिले जे 1972 मसीह रे महाप्रभु चारमाळ को उठिले नहीं जेते चेष्टा कले मध्य केते दौड़ी छिंडी गला परम प्रभु जम्मा उठिले नहीं सेतबेले तीन रथर सेवक माने एकाठी हेले एवं तीन रथर सेवक माने एकाठी होकर समस्त चेष्टा कले मध्य प्रभु उठिले नहीं परिशेषरे गजपति महाराजा पक्ष को खबर गला गजपति महाराजा आसिले एवं गजपति महाराजा केवल रथजात्रे थरे मात्र आसती चेरा पहरा करने किंतु से वर्ष जिते राजगुरु माने माने बारण कले कहले ना तुम्हें थरे मात्र जीव किंतु पुणी

0: पर्यायर विलंब मध्य परवर्ती समय रे सुधारी नबार जो प्रशासन रो व्यवस्था से व्यवस्था में आम देखु तेणु से कौनसी व्यस्ततार कारण नाई किंतु आमर समस्त अपेक्षा रही महाप्रभु केत चारे विराजमान करेंगे महाप्रभुंर यो लीला कथा आम कहु ए संपर्क में डॉक्टर नरेश दास आपन टे कौन कहतु
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अस्ति प्रशस्त ललितो लवणाब्धि तीरे नीलाचलांचल तटी मुकुटायमान एक स्त्रीमूर्ति कुहनाकृत चित्रमूर्ति लक्ष्मीपति सकल दैवत वंदनीय वर्तमान जो संकटजनक अवस्था आम थिले जे गुमुट भितर महाप्रभु रही जाइले बाहर को बाहर नथिले किंतु से संकट टली जाइछि वर्तमान महाप्रभु गुमुट बाहर को आसीगले एवं धीरे धीरे धीरे धीरे रथ आड़ को गति करिवार आमे देखिबा को पाउछु तेणु जाऊ महाप्रभु निकट रे समस्ते प्रार्थना करिवारु कातर प्रार्थना करिवारु महाप्रभु निश्चित भाव से कथा को शुणी एवं धीरे धीरे धीरे धीरे अग्रगति करथापि
0: डॉक्टर दास गोटे संभावना हो पारे कि हाँ। जे महाप्रभु जिते बैश पहाच देकर गुमुट भितर को प्रवेश कले मस्तक खंजा होता लगि जो टाहिया कौन सी कारण टाहिया जिते गोलायमान हुए आम तो देखिले बड़ ठाकुर बलभद्र टाहिया किभली भाव में दोलायमान आसाला प्रबल भाव में दोलायमान हुए टाहिया एवं से जो टाहिया दोलायमान अवस्था हुए तो से गुमुट भितरे टिके तार भांगिगला कि कौन एमती असुविधा है किपारे कि
1: जहाँ असुविधा हेले अक्षमणीय अपराध कारण ये असुविधा टी जगन प्रभु कोटि कैबल्यनाथ पाखे ही करा जाई मोर कहवा कथा ये आज परंपरा नुहे ये हूँ हजार हजार वर्ष तल परंपरा तेणु भांगिजी गोटे टाहीटे भांगिज श्रीजगन्नाथ मस्तक संपूर्ण भाव में लंडित मस्तक भली हम यहीटा जमा शोभन नुहे महाप्रभु यही श्रीमुख को भक्त मान दर्शन करने को बोध हुए चाहूना तेणु से कौन ये घटना निश्चित भाव यार पुंखानुपुंख आलोचना करा वर्तमान महाप्रभु सब सब समस्त सब आशंका को दूरीभूत करी से वर्तमान अग्रसर है अग्रभाग जो सेवक माने थिले से बहुत आगो को चली गले पछरे पृष्ठभाग आज छत्र आड़ेणी इत्यादि सब रही कितु पाग बड़ प्रतिकूल अच्छी कारण महाप्रभु किंतु वर्षा पुणी वर्तमान आरंभ हो वर्षा बोध हुए कौन सी केत भी मान स्थगित होनी बंद होनी तेणु वर्षा चली जहाँ शांतनु बाबू कहते प्रभु इच्छा तेणु प्रभु इच्छार तो सृष्टि आतजात होेणु आम वर्तमान देखु श्री बलभद्रंकर रथ से बड़ ठाकुर वृंधा सर एवं देवी सुभद्रा रथ से माँ वृंधा सर वर्तमान केवल अपेक्षा श्री जगन्नाथ महाप्रभु नमदी घोष रथ को उठिबे एवं नमदी घोष रथर चारमाल पार्श्वर्ती से होती तो आज सबुठारु मन दुख हो आपण मानकर मन दुख आम मानकर मन दुख कारण भगवान ये भली श्रीमस्तक ताहिया न थाई से केबे बाहर को बाहरती ना जत महाप्रभु विजय हम से टाहिया निश्चय लगे तार कारण हो आज परंपरा नुहे रघु अरक्षित देवा प्रतिश्रुति आज प्रतिफलित होणु यह भाव में महाप्रभु आसे टीवी चैनल रे ये रूप को कोटि कोटि जनता दर्शन करुँच जदि एमती किसी निश्चित निश्चित भाव में अक्षमणीय अपराध कारण ये अपराध साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु सहित ही तेणु ये देखु प्रत वर्ष कौन ना कौन गोटे गोटे अघटन घटवाक जामें तो भावुलु ए जातीय अघटन केवे घटना कारण ये तो गोटे टाइर।

0: समर्पित भावना नहीं समर्पित भावन जो रथ निर्माण करवक माने महाराणा सेवक भोई सेवक तामरा विषय दरजी सेवक अनेक सेवक मानकर सेवा समर्पित रे जो रथ आज प्रस्तुत हो रथ से आपण विजय करे कालिया शांत चलती प्रभु चलतु गमनीय चपा चका आखि देखि आखि जाए लाखि मणिमा मणिमा प्रभु पड़ुछे डाक रमणीय हुळहुळि मेदिनी पड़े उछली आहा कि सुंदर तुम कला त्रिमुख तुमे परा जगतर नाथ जार दर्शने हजि जाएटी दुख प्रभु आपणकर से कमनीय चका आखि जहाँ देखिदेले ना मन पूरीते आपणकर आखिरे रही समोहनर शक्ति आपणकर मुहरे रही एक आकर्षण जो आकर्षण केन्द्रबिंदु आज छुटे आसी अनेक भक्त भारत वर्ष नुहे विश्वर कोण अनुकोण आसी ये सारा संसार एकमात्र ठाकुर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समग्र विश्वर दृष्टि आज एकीभूत एवं गोटे बिंदु रे स्थिर हो जाए बिंदुटी हूँ महाप्रभुंकर चका आखि तेणु महाप्रभुंकर परम पावन लीलार य चरम मुहूर्त जिते उपगत हो बड़दाण्ड में समस्ते दीर्घ समय धरी जो प्रकार हताशा जो प्रकार उद्वेग एवं जो प्रकार नैराश्य भितर अपेक्षा करते भक्त मैने से नैराश्य एवं उद्वेगर अंत घटे महाप्रभु हौ टे विलंब है कौन पर महाप्रभु अटकी से कथा आम पर जाणी महाप्रभुंर करुणु से कथा निश्चित भाव में आम जानवाक पाइबा तेज महाप्रभु आउ अधिक समय भक्त मानू अपेक्षा नक आसी जा बड़दाण्ड को नंदीघोष रथर चारमाल तले सेवक मैने झुलाउं ठीक राधावल्लभ मठर सम्मुखें महाप्रभुंर विग्रह बसी चका आखि आम स्पष्ट भाव में देखिपु तेणु यो चका आखि एवं महाप्रभुंर महिमा से संपर्क में मन पड़ू मोर भक्त कवि मधुसूदन रावंर गोटे सुंदर रचना से कहते जे अनार्य देख जाकंदरे हरि शिला रूपधारी नील माधव अर्धधरणीर बौद्ध भकते बुद्ध शुद्धोधन गोपी वल्लभ ब्रह्मवादी जही निभृते चिंतई निरीगुणे नित्य सच्चिदानंद वेद अंतरवादी श्रुति तत्वदर्शी प्रणव स्वरूप श्री आदिकंद सुर गणपति शिव भक्त विष्णु रूपे भगवान राजंती जही जेजथा भावई शेषथा देखई अनुरूप सिद्धि लभई तही। महाप्रभु गीतारे मध्य जे जथा मां प्रपद्यंती तां तथैव भजाम्यहं तेणु आम समस्ते भिन्न भिन्न भाव में महाप्रभु को अर्चना करुचे महाप्रभु को भावना करुचे तेणु समस्त भाव भिन्न समस्त अंतर सुचिता भिन्न एवं समस्त अंतर आवेग आकृति भिन्न भिन्न तथापि से अनुसार से आपणकर पात्रता अनुसार जहाँ कहा जाए महाप्रभु ताइली प्राप्त हमें यही महाप्रभुंर महिमा हूँ शैव कहुपे आंकु गणपति कहा जाय पारे आंकु बुद्ध कहा जाय पारे आंकु जैन कहा जाय पारे आंकु अरहतंकर जैन बोली कहा जाय पारे मीमांसक मानंकर मध्य से जो कर्तेति न्यायिका बोली कहा जाय आंकु कर्ता बोली मध्य कहा जाय पारे तेणु जी जो दर्शन दृष्टि महाप्रभु को भाविबा को चाहिबो महाप्रभु से ही रूप से दर्शन देचंती यार बहु प्रमाण आम श्रीक्षेत्र देखुचु एवं बुद्धंकर त्रिरत्न जैन मानंकर मध्य से त्रिरत्न एवं ये सबू कथा गुड़ाक बुद्ध धर्म संघ ये सबू कथा महाप्रभुंर विग्रह समाहित आपण जानते महाप्रभु ये क्षेत्र को जो माने आसी से माने समालोचक आलोचक मानू महाप्रभु आपणार कर आपणार करी कौन कर महाप्रभु केवे छोट होना आपण देखिए पूरी श्रीक्षेत्र एते मठ एते मंदिर एते विचार एते दर्शन एते भावना कौनसी भावना को मध्य महाप्रभु मना करना सबु श्रीक्षेत्र स्थान पाई सबु श्रीक्षेत्र स्थान पाइबा द्वारा महाप्रभुंर महिमा आहरी बहुगुणित तो हो महाप्रभु छोट हो जाए ना अन्य को देवता होते हुए तो निज क्षेत्र में निज स्थान अन्य मानक से अस्वीकार करते अन्य मानक स्थान दे न था किंतु महाप्रभु उदार हृदय समस्त एक क्षेत्र में स्थान दे तेणु आज श्रीक्षेत्र महिमा कहीं विस्तारित होती श्रीक्षेत्र महिमा कहीं।

0: this evening. With that, we end the midday news.
1: आकाशवाणी कटक शुणु शखक्षेत्र पुरीठे अनुषित महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ विश्वप्रसिद्ध घोषयात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारावरणी प्रदान कर डॉक्टर शांतनु कुमार रथ डॉक्टर नरेश चंद्र दास डॉक्टर कल्याणी नंदी डॉक्टर हरिहर कानुनगो एवं श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी प्रत्यक्षदर्शी धारावरणी पर
2: देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
3: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
4: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
3: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
3: There is an urgent need for us.
4: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
2: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
5: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
5: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस

0: भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल CPP की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को

0: वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के

बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: जे सबुबेले समान रहे केबे परिवर्तन हुए नाही एवं जो धर्म जो विचार रो आदि नाही कि अंत नाही ये को अनादि काल रु ए धर्म विचार चली धर्म कहले आपण गोटे साधारण संकीर्ण दृष्टि धर्म बोली बुझंतु नाही धर्म कहले जहाँ मनुष्य को मनुष्य सहित जोड़े जहाँ वेद रे कहा जाई समग्र मानव जाति को एक विचार करी जो वेद दर्शन करथिले एवं वेद रे कौन से विभेद नथिला वेद रे कौन से संप्रदाय नथिला आपण प्रत्येक वेद मंत्र को देखंतु सेठी कौन से संप्रदाय कौन से संकीर्णता नाही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् एक कथा कहिला बेले आमे को संप्रदाय कथा कहुचु कि को निर्दिष्ट अंचल कथा कहुचु कि को निर्दिष्ट देशर कथा कहुचु कि एई वेदर ज्ञान रे बा वैदिक ऋषि मानक दृष्टि रे समग्र विश्व थिला तेणु से जहाँ उच्चारण कर समग्र विश्वप उच्चारण कर समग्र मानव जाति उच्चारण करा हूँ सनातन तेणु एभली जो मूल्य सनातन धर्म एवं दर्शन रे एभली जो विश्व मानव पाई गोटे वैश्विक चेतना गोटे विश्व चेतनार कथा कहुई से चेतनाटा को प्रवाहित कले संसार सुख हब एवं संसार समस्ते मिलमिशिक रही पारे आप भावतु तो आम भितर केविधता अच्छी आमर भाषा भिन्न भिन्न आमर चलनी भिन्न भिन्न आमर वेशभूषा भिन्न भिन्न आम शरीर आकृति भिन्न भिन्न आमर पर्वपर्वाणी भिन्न भिन्न एत भिन्नता भितर आम केमी अच्छे हजार हजार वर्ष धरी भारत एक होकरी अच्छी तार एकमात्र कारण हूँ ये सनातन विचारधारा एवं सनातन विचारधारा भितर जो समकालीनता अच्छी जो कंटेम्पोरारी स्ट्रेंथ अच्छी जहाँ को बल कह जाए से बलटा ही भारत वर्ष को एकाठी कर रखी तेणु यही सनातन परंपरार सनातन धर्मर कम भूमिका ना से भूमिकाटा को निर्वाह करमर गोवर्धन पीठर शंकराचार्य महाशय जोटा आदिगुरु शंकर करते आदिशंकर करते प्रवाह धारार प्रवाह को जारी रखिंट शंकराचार्य महाशय तेणु शंकराचार्य महाशय होती जे वेदज्ञ पंडित वैदिक गणित बहुत पारदर्शिता अच्छी निजे जड़े वैदिक सन्यासी तेणु वैदिक सन्यासी वेद वेदांत षडदर्शन ये आकु प्रचार करने गोवर्धन मठ जो उद्यम करद्यम क्षेत्र में उल्लेखयोग्य भूमिका रही तेणु वर्षा को खातिर नकर परिणत बयसर अवस्था को खातिर नक से आसी आपण जानते शंकराचार्य जो आसती सहित छह जन अनुगामी आसती गोवर्धन पीठ को विधिवत भाव में मंदिर प्रशासन तरफ निमंत्रण जाए और निमंत्रण से ग्रहण कर आसिक महाप्रभु को से दर्शन करती आ शंकराचार्य सहित श्रीमंदिर कौन संपर्क ना श्रीमंदिर गोटे हिंदू धर्मर गोटे सनातन हिंदू धर्मर पीठ होठे विराजित देवता जगन्नाथ होती संप्रदायर ऊर्धर उठिकी प्रभु बड़दाण्डे विराजमान कर समग्र विश्व को एकाकार करने सबू मनुष्य मानू स्नेह श्रद्धा अनुरागर रंजित करने प्रभु रथजात्र आसुवु से विश्व प्राणर भावना नहींक्र जोटा सनातन धर्म संस्कृति अच्छी से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बा गोवर्धन मिठर शंकराचार्य जी भी हूँ से रथजात्र महाप्रभु को दर्शन करार विधि रही आगे कथा आपण मैंने जानते जे मुक्तिमंडप बोली आमर जहाँ अच्छी पूरी श्रीमंदिर भितर जो मुक्तिमंडप पंडित सभा जोटी षोल शासन पंडित मैंने बसती धर्म दर्शन संपर्क में जहाँ कि निर्णय नवा कथा जहाँ कि निष्पत्ति नवा कथा से बहुशास्त्रदर्शी बहुशास्त्र अध्ययन करते धर्म विचार क्षेत्र में कौन संकट उपस्थित हुए से तार निर्णय करती तार नायक होती बा तार सभापति आपारती तार अध्यक्ष कहीपारती तार नायक होमर गोवर्धन पीठर शंकराचार्य तेणु ए दृष्टि विचार करूँ धर्म दर्शन ए सबू क्षेत्र में केते पांडित्य थिले जड़े ए प्रकार एक दायित्व निर्वाह करंकराचार्य जो महिमा शंकराचार्य जो प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठार निदर्शन स्वरूप शंकराचार्य महोदय को निमंत्रण कराए रथारूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने
1: पुरीर बड़दाण्ड केवल गोटे रास्ता नुहे
2: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ
1: एही पथरे जाति नाही धर्म नाही परिचय नाही
2: अछि केवल मनीष पणिया
1: आउ जेते बेले कहा पाई साहाज्य रा हाथ बढ़े
2: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रति श्रेष्ठ समर्पण
1: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना
2: जेउंटी अनुबंधित घर डाक्तरखाने रे सात दिन जाए डेढ़ लक्ष टंका पर्यंत चिकित्सा खर्च सरकार बहन करती
1: ओडिशा रा 798 घर।

0: प्रदान करा व्यवस्था करा जाई
1: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पई आपनको निकटस्थ अंगनवाड़ी केंद्र रे जोगाजो करंतु।
0: अधिक सूचना जानिबा पई महिला ओ शिशु विकास विभाग रो वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
2: ये मुदिटि भलो लागुची पत्नी को पसंद आसीबो।
3: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ए डिजाइन भी नुवा
2: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण केउठी मिलिबो।
3: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप। सुना किनिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु।
4: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जाइछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जाइछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
1: ओडिसा माटीरु उत्पत्ति विश्व दरबाररे बढाउछि भारतर ख्याति। महाप्रभुंक पवित्र श्रीगुंडीचा यात्रा अवसररे नालको पक्षरु सभिंकु भक्ति भरा अभिनंदन।
5: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। लक्षे राजार मौडमणि श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर आद्य सेवक ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव तामजान रे जाउचंती तिनि रथ को दर्शन करिबा सहित राज वंदापना करिवे राजनीति वंदापना करिवे छेरा पहरा करिवे। आउ टिके आगुरु आमे प्रथम केन्द्र रु सुनुतिले जे जगतगुरु शंकराचार्य तिनि रथ परिभ्रमण करी प्रदक्षिण करी से महाप्रभु को समग्र जगतर कल्याण पई मंगल पई चिंता करूतिले। तापरे आज जो वर्तमान जाउचंती तामजान रे वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाट कलबर्गेश्वर विराधि वीरवर जो भूत भैरव जे कि ओडिशार मौड़मणि ओडियार राजा जे कि राउतरु राजपुत्र जो राजा आज छेरा पहरा करिवे एक पारंपरिक विधि तामजान जाउचंती जोधु बेसरे जाउचंती धला पोशाक एवं मस्तक शिरस्त्राण एवं आगरे जो छती तरास पदंतरी बाजा देउलकरण सहित जाउचंती राजगुरु मध्य सहित जाउचंती पारिषद वर्ग राज नर पारिषद वर्ग सहयोग रे जाउचंती जोड़ हस्त रे हाथ जोड़ी प्रभु को दर्शन करने सहित जगतर कल्याण पाई जगतर मंगल पाई जाउचंती गजपति महाराज। ये एक सांस्कृतिक परंपरा 1970 मसीहारु 2026 दीर्घ 56 वर्ष हला महाप्रभु जो महाप्रभुंकर जो सेवा करुचंदी एक अलभ्य सेवा कारण राजा एवं प्रजा जे समान साम्यवादर समाजवादर मानववादर देवता होचंदी महाप्रभु जगन्नाथ। एठी समस्ते समान थिबारु गजपति महाराज जो जोड़ हस्तरे अति अनुनय विनय पूर्वक न्यूछाली हेकिरी आज जगतर कल्याण पे जो अनुकूल पाग परिवर्तन जो प्रतिकूल पाग चली इंद्र देवता आकाश रे थाई जो पुष्प वृष्टि करुचंदी से पुष्प वृष्टि को खातिर नकरी श्रद्धालु भक्त माने असंख्य भक्त माने बड़दांड रे रुंड होइचंदी। बड़दांड आज जनाकीर्ण आमे भावुले जे बोधे आज अल्प लोक हे अल्प आसबे किंतु देखा जाउची जे प्रभुंक दर्शन पई श्रद्धालु भक्त मानक केते आवेग केते उत्कंठा तेणु पाट छत्री तले मेहनारे बसी रथ पर्यंत आसुचंती गजपति महाराज। सौम्य दर्शन गजपति मस्तक शिरस्त्राण देहरे श्वेतरंगर चुड़ीदार पंजाबी उपरे उत्तरीय जगन्नाथंकर चलती प्रतिमा होती गजपति महाराज एवं से जो छेड़ापहरा कार्य करे चंडाळर कार्य देवतार सेवाकर्म राजा चंडाळर भेदभाव नहीं गजपति राजांकर उन्नत राजकीय मस्तक अवनत हो जाए महाप्रभु पाखे तेणु यो भंडार मेकअप जो देवे यो पारंपरिक विधि विधान जो कार्यक्रम ताकि सूचाई दौची जगन्नाथ संस्कृति में समस्ते समान समस्त समान अधिकार रही राजा एटी चंडाल बेस जो छेरापहरा कार्य करे एटी भक्त जनतार कलकल्लोल जमी बड़दाण्ड आज प्रकंपित हो उठू एटी मणिष एक धर्म एक छेरापहरा एटी मैत्री बोधर प्रतीक यही गुंडीचा महोत्सव पारमार्थिक महाभावर स्मारक हो।

0: से स्थान रही जो लोक चलाचल करे ना आर वर्ष यही चारमाल पड़ी चारि पड़ी लोक क्षय होता जहाँफल वर्तमान यही चारमाल गुड़िक फिटुची अचिरे निर्दिष्ट स्थान को बुहाई पलेब अल्प समय पर घोड़ा जोचा हे चारिज घोड़ा आसवे शंख सुचित्र एवं बड़ाहक सुचित्र अंगद मेघनाद शंख सुचित्र अंगद मेघनाद ये चारिज घोड़ा कला घोड़ा देवी श्री बलभद्र होती धवल वर्ण किंतु तांकर घोड़ा गुड़िक हूँ कलावर्ण तेणु ये कलावर्ण जनक ना कि शंख अच्छी शंख सुचित्र एवं अंगद मेघनाद यही चारिज जो अच्छा घोड़ा से बर्तमान घोड़ा जोचा हे एवं से घोड़ा घोड़ा को जोचा सारा
1: प्रज्ञा
0: अच्छी मतांतर जहाँ भी हूँ से घोड़ा गुड़िक जोचा हे जोचा है पुणी डाउक महाराज आसवे डाउक महाराज आसिक बसिक सब घंटुआ मान आसवे घंटुआ मान ये करपर आरंभ हम रथ टणा तेणु वर्तमान गजपति महाराजा आमर दिव्य सिंहदेव से वर्तमान श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ से छेरा पहरा नीति करूँ जो छेरा आ पहरा छेरा पहरा शब्दर अर्थ होेरा हूँ तरलता अर्थात घोरा चंदन घोरा चंदन को छेरा बोली कहती एवं पहरा पहरा मान पहर ओल्वा गजपति महाराजा जो आसुचर केतक नीति सीटी संपन्न से नीति मध्य गजपति महाराजा आसवे एवं कामजान आसवे ठाटे आसवे कारण से हमें राजा राजकीय ठाणी से आसवे एवं तामजान रथ सम्मुख भागे से उठु चलिकी जी चारमाल से प्रथमे आग न्यू छाड़ी हे प्रणाम टे निवेदन करे पुष्पांजलि देवे एवं चामर सेवा करे आलट सेवा करे कर्पूर आलती रे महाप्रभु को बंदापना करे ये सब कार्य सरीगला परे राजगुरु सांगरे आसी एवं जो मुदुली सेवक अच्छा से जो धरी जो समार्जनी जो झाड़ू से सुवर्ण समार्जनी अर्थात सुना बेंट थिबा गोटे झाड़ू टीए से संस्कार करी देवे गजपति हाथ को एवं भंडार मेकअप रूपा पिंगण रे चंदन पानी रखि थे से चंदन पानी को मध्य राजगुरु महाराज से संशोधन ये संस्कार करे एवं जेतेबले भंडार मेकअप गोटे रूपा पिंगण रे फूल रखि थे से फूल गुड़ी को आगे आगे पकई पकई चलु थे एवं पछरे सुना शोधनी रे बा सुना झाड़ू रे गजपति महाराजा रथर चतुर्पार्श्व बुली बुली से परिष्कार करुथिबे ए सबु काम सरीगला परे चंदन पानी छिंचा हबो एवं राजा निजे संस्कारित चंदन पानी को सही शोधन शोधन करा जाइतिबा रथर चतुर्दिगरे से ताकू छिंची छिंची चालिबे
2: ओडिशार प्रगति पथरे जोड़ी हेउछि विकासर नुआ अध्याय दूरता कमाई गाँ को गाँ सह जोड़ुछि सेतु बंधन छात्र छात्रीं को पई प्रतिबंधक साजुनी बढ़िला नई जातायत हेउछि सुगम सुगम ग्राम्य सड़क रे एबे दुआरे पहुंचुछि आंबुलांस गाँ को बजार सह जोड़ुछि प्रशस्त सड़क चासीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबु पई खोलुछि नुआ सुजोग पर्यटन स्थल को सुगम करुछि सड़क संजोग बढ़ुछि पर्यटकों आगमन गाँ गाँ रे लंबिछि उन्नत सड़क दृढ़ हेउछि विकासर भित्तिभूमि समृद्ध हेउछि ग्रामीण ओडिशा सड़क सेतु और भित्तिभूमि विकास माध्यम रे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्वोदय संकल्प माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मार्गदर्शन रे ओडिशार विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग
3: पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे नालको परिवार पक्षरु हार्दिक शुभेच्छा ओडिशार प्रगति और आत्मनिर्भर भारतर साथी नालको
4: पुरीर बड़दाण्ड।

0: केवल गोटे रास्ता नुहे
1: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ
0: एही पथ रे जाति नाही धर्म नाही परिचय नाही
1: अछि केवल मनीष पणिया
0: आ जते बेले कहा पाई सहाय्य रा हाथ बढे
1: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रति श्रेष्ठ समर्पण
0: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना
1: जेउंटी अनुबंधित घर डाक्तरखाने सात दिन जाए देढ़ लक्ष टंका पर्यंत चिकित्सा खर्च सरकार बहन करती
0: सातश अठानबे घर डाक्तरखाना योजन पंजीकृत होती
1: समस्त सरकारी डाक्तरखाने सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा
0: आसंतु मानविकतार संकल्प में सहभागी हो आम भी बढ़ावा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायतार हाथ
1: पवित्र घोष यात्रा हार्दिक शुभेच्छा
0: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित जारी
2: राष्ट्रीय प्रगति भीति नारी को शक्ति विकसित भारत में समृद्ध ओडिशा महिला सशक्तिकरण को केंद्र और राज्य सरकार विशेष गुरुत्व महिला सशक्तिकरण जुगांतकारी योजना सुभद्रे महिला मिली आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन योग्य हिताधिकारी सहायता असुविधे महिला तुरंत सहायता महिला हेल्पलाइन नंबर 1811 असहाय महिला शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दिया प्राधान्य प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़ा आम भाषा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशु सर्वांगीन उन्नति सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार
3: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ डॉक्टर नरेश चंद्र दास आपण गजपति ये जो राजनीति कथा छेरा पहरा कथा आपण कहते आपण तो पुंखानुपुंख भाव में टिकी निखी करी कहते छरा कौन चंदन कौन महाप्रभु केमती आसती गजपति महाराजा केमती आसती केमती केमती बंदापना करती कौन कौन कर सब कहते आपण कितु या भितर गोटे बड़ तत्वटा हूँ जे एबे आमे कहूँ जाति प्रथा उठे देवा कथा किंतु को कालरु जगन्नाथ संस्कृति रे जाति प्रथा को स्वीकार कराही नहीं तार बड़ निदर्शन होची महाप्रसाद चंडाल हाथ ब्राह्मण खाइबे ब्राह्मण हाथ चंडाल आउ कौन बड़ दृष्टांत दे पारिबा द्वितीय कथा गजपति महाराजा जे कि चंडाल सेवा ये करुंट तेणु चंडाला को घृणा करहब कि जोठी को जो राज्यर जो देशर गजपति महाराजा स्वयं चंडाल कार्य करने को स्वतप्रवृत हो आसती से चंडाल घृण्य कौटी है तेणु ये सेवाटी सी करवाटी सेवा गोटे प्रतीकात्मक सेवा आपण कहते कपिलेन्द्र सेवं समय से बड़ छता मठ पाख दांड को ओई ओई आसुते से परिस्थिति वर्तमान ना कौन से कारण से सब बंद हो जातु ये जो प्रतीकात्मक भाव में करा कम बड़ कथा नुहे आपण गोटे कथा आ गोटे कथा मु भावुची जे जहां को आमे चलती विष्णु बोली कहू गजपति महाराज को दर्शन कले जगन्नाथ को दर्शन कला भाया आमर अनुभव हुए लोक मैंने गजपति महाराज पाद स्पर्श करी आशीर्वाद ग्रहण करती किंतु सी चंडाल कार्य कर देखु केड़े महानुभवता ये कथाटा श्रीक्षेत्र छेरा पहरा भितर यहीटा विश्व को सन्देश जा आमे जापारू सीना ना आपण कौन भावुंट इंग्लैंड है यूरोप है अमेरिका है जो देशर सब भक्त मैंने आसिक श्रीक्षेत्र एकाठी होती कौन मूर्ख लोक कि से तो सब पाठ पढ़ी आमको इंग्राजी पाठ तो पाखु आम शिखिचु कितु सी कहीं आसु कथा गुड़ाक जो देखुंत कथा गुड़ाक देखा फल जगन्नाथ धर्म जगन्नाथ संस्कृति या प्रति आकर्षण बढ़ुच
4: ये गोटे महनीय संस्कृति
3: सेया
4: ये महनीय संस्कृति आकर्षण करुची
3: ये दिन अधकर कथा नुहे ये हजार हजार वर्ष धरी शोधन संस्कार गुड़ाए मूल्यबोध गुड़ाए वैल्यू बोली आम जहाँ कहूँ गुड़ाए आदर्श गुड़ाए संकल्प ये सब कथा गुड़ाक ये जगन्नाथ सेवा पूजा आचार व्यवहार भितर रही थी ये गोटे विश्वजनीन हो
4: जाठि जो सारा विश्व में जगन्नाथ मंदिर निर्माण निर्मित एवं सिटी रथयात्रा होने अनुसरण
3: अनुसरण कर गोटे कथा है जे आपणकर जातिटा केवे बड़ नुहे गुणटा हूँ बड़ एक कथा किए कहते रामानुजाचार्य कहते रामानुजाचार्य कौन कहले
4: वर्तमान राजा

0: गर्भधारण पाई 10,000 टंका पाइबे।
1: विशेष भावे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं परवर्ती जे कोनोसी गर्भधारण पाई कन्या संतान क्षेत्र रे 12,000 टंका एवं पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जायछि।
0: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पाई आपनको निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोगाजोग करंतु।
1: अधिक सूचना जानिबा पाई महिला ओ शिशु विकास विभागर वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
2: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र, यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
3: क्रोध पछे जले विद्युत नळे जलदाने घन बाध्य सुख तेजी राजा तो शिवे परजा तेबे तो परमाराध्य। श्रोता बंधु वर्तमान भगवती माँ सुभद्रांक रथरे गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव छेरा पहरा करुछंती। आगरे चालिछंती राजगुरु जे मंत्र पाठ करुछंती ओम हिरण्य वरणाम हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह एवं जो घटुआरी आगे अच्छा जे चंदन सेवा करती चंदन घोरी मंदिर प्रति चंदन लागी को से चंदन जोगांती से रूपा पिंगणु चंदन छेरा को छिंसी देउचंती रथर चारिपटे स्वर्ण मार्जनी को धरी से शुक्ल पुष्प एवं छेरा को पहरी देउछंती आदर सहित गजपति दिव्य सिंह महाराज। आपण माने अनेक कथा शुणुले आद्य सेवकंकर विषय बास्तव में आमे माने आम परंपरा को नहीं एते महनीय जीवन जापन करुछे तेणु परंपरा वर्तमान से जो छेरा पहरार जो स्वर्ण मार्जनी अनेक सेवायत माने से परिवेश रे मुंडरे लगे दौंती कहीं केते अहोभाग्य से झाड़ूटीर जो थे परम ब्रह्मंकर से पवित्र दिव्य रथर स्पर्श बा छेरा पहरा करागला। त्रिखंडिका काहाली विषय आपण माने शुणुले आमर जे करुले वरिष्ठ घोषक डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय तेणु ये सब हेउची आमर परंपरा कौनसी समय रे एथिरे भूल होई पारिबो नाही। आज गोटे विचित्र कथा देखिबा को मिलिछि प्रायतः व्यक्तिगत अनुभव रु मु कहिबि 32 वर्ष धरी ए रथयात्रा को देखि आसुथिले मध्य आदि जो प्रकार रे सकाळ समय रु मात्र 2 घंटार पाग सुखिला थिला किंतु संपूर्ण भावरे वर्षा सिक्त सेवा आज महाप्रभुंकर कौन रही लीला से प्रति सेवायत एपरिकी जो वृद्ध बयस थिला जो वयोवृद्ध जगद्गुरु शंकराचार्य से मध्य तीन रथरे सेवा करने समय पुष्पांजलि देवा समय ओदा वर्षे भिजि भिजि सेवा करुले। वर्तमान गजपति महाराज से तीन रथर भिजि भिजि वर्षे अति प्रबल मात्रे मेघ से मेघरे से सेवा करुछंती। देखंतु आद्य सेवक भिजुचंती महानायक छतीसा निजोगर महानायक से मध्य भिजुचंती आउ समस्त सेवायत माने कौन कहिबे कहाकु कहिबे नियतिर जो इच्छा ता विरुद्ध रे आमे माने साधारण मनीष आमर कौनसी नाही व्यवस्था आमे नियति को विरोध करि परिबा नियतिर प्रतिकूल रे जाई परिबा तेणु सीए हेउछंती जेपरी तांकर आशीष रे सुंदर ए धरा कुहा जाईछि प्रभु तुमरी आशीष से सुंदर ए धरा तेणु ये तांक आशीर्वाद रे सब जहां आमे करिबा ताहा ही सर्वश्रेष्ठ कार्य बोली आमको विवेचना करिया पड़िबो। सुंदर पुष्प राजी रे मंडली होइथिबा से दर्प दलन रथ को सर्वलक्षण संपन्न जो रथ रे सारथी अछंती और

0: दान करुछन्ती तांकर अंटीरे तांको हातकु सी मुंडरे लगाई राजगुरु को देउछन्ती ए आशीर्वादर माला आम श्री नहर को नहीं करी जीवा तीन रथरु तीनोटी माला से संग्रह करिले जहाँ पयर माला बा आशीर्वाद माला बोली कुहा जाए तेणु वर्तमान वीर काहाली बाजुची क्षमा प्रार्थना करी जगतर कल्याण पाई जगन्नाथ महाप्रभुंकर आशीर्वाद ये प्रभु आशीर्वाद पृथ्वी उपर किपरि रहिब ये श्रीक्षेत्र किपरि सेमती अक्षुण्ण अभिन्न एवं धर्मर क्षेत्र होई जुगे जुगे रहिब एही प्रार्थना को करुछन्ति चारमाळार उपर ठिया होई गजपति दिव्य सिंहदेव ऊर्ध्व बाहु होई हातर जोड़ी समस्त नरनारायण मानंकु बड़दाण्डरे से कोटि प्रणाम जणउछन्ति सांगरे समस्त सेवायत माने अछन्ति हरि बोल ध्वनि पकाई से महात्मा भगवती सुभद्रांक रथरु वर्तमान चारमाळा आड़कु आसुछन्ति वर्तमान तळकु आसुछन्ति पुणी पाछोटी आणिबे जो व्यवस्था भितर जाइथिले श्रीनहररु सेई प्रकाररे से रौप्य तामजानरे बसी धळा छता कला छता दुईटी छता देखंतु गजपतिंक सम्मानरे जेपरि अक्षुण्ण रहिबो से कथाकु गुरुत्व दिया जाउछि तेलिंगी बाजा बाजुछि भजन्तरी वीर काहाली बाजुछि सांगरे अछन्ति देउळ परीक्षा देउळ करण लेंका करण छामु खुंटिया परीक्षा एवं राजगुरु ये समस्त पारिषद वर्ग सेवायत मानंकु धरी वर्तमान कांधुआणी होई एक तामजान रे आसुचंती श्रीनहर आड़कु ए अवकाश रे पुलकित होउचंती नरनारायण माने बड़दाण्ड रे थिया होइथिबा श्रद्धालु माने निजकु धन्य मने करुचंती अरे केते पाखरे आमे रथकु देखिलु केते पाखरे गजपति महाराज को देखुचु ये जो परिवेश यार विकल्प नाही एहाकु विश्व दरबार रे समस्ते भावंती कौन ए ठाकुर कि लीला करुछंती आपण माने चिंता करंतु श्री क्षेत्र ए क्षेत्र नाम होउछि श्री प्रथम रहिला श्री शब्द रे मां महालक्ष्मींकर कृपा को ए क्षेत्र धारण करिछि बा नामित होइछि ए क्षेत्र श्री द श्री सह श्रीनिवास श्री निधि श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमां लोकत्रयाश्रय यही श्री क्षेत्र श्री शब्द को नहीं एते रुद्धिमंत एते विश्व दरबार परिचित आज आमे माने जो स्थान को गले मध्य मु निजे भारतर बाहर को यूरोप महादेश रे मध्य सेई जगन्नाथ महाप्रभु को पाई महाप्रभुंकर पाख बा तांको क्षेत्र जणे मनीष बोली एते आदर पाइकरी आसीछि ये होउछि महाप्रभुंकर आम मानंको उपरे कृपा करुणा सेथि पाई सबु करिबा मंग सेई महाप्रभुंकु सकाळ उठिले तांकर नाम नेबा रातिरे सोइबाकु गले तांकरि नाम देबा वर्तमान देखंतु फेरी आसुछन्ति गजपति महाराज तं ससम माने पाछोटी आनुछन्ति तांकर जेउ रहिछन्ति पारिषद वर्ग एई कथाकु वर्तमान एबे आसंतु सुनिबा बड़दाण्डरु किछि श्रद्धालु भक्ति श्रद्धालु मानंकर भक्तिपूत अभिव्यक्ति आम केन्द्र तरफरु संग्रह करा जाइछि तेणु आपण मानंकु आमे सेही कार्यक्रम रे सम्मिलित कराउछु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ ना है शारदा विश्वास मु भुवनेश्वर आसी आज सब बड़ कथा ठाकुर एमती मो भाग्य जे आज दिन में मोर ये नातुणी जन्मदिन मोर भी जन्मदिन तापर ठाकुर तो अनुभव बहुत किसी मो जीवन बहुत किसी भगवान सब मोर करते चाह चाहे भी ठाकुर को मुझे सब बेले दर्शन सब बेले मो पचरे ठाकुर चीवा डाई मो पर प्रति आशीर्वाद भी बहुत बढ़िया रखिंट आउ अनुभव ठाकुरंकर कहिले तांकर महिमा बहुत किछि अछि
2: आज आपनको इठी केमती लागुछि जो बड़दाण्ड रे आपन प्रभुंकर घोष यात्रा चर्मचक्षु रे देखुछन्ती आपनको केमती अनुभव
1: माने बहुत बढ़िया है कि एते वर्षा रे भी सब भक्त माने आछन्ती सतरे जगन्नाथंकर एतकी महिमा एमिति अछि जेउडा कि समस्त आसी पारछन्ती एतकी भी कालियांको डाकुछि प्रभु समस्ते आसी समस्त परिवार को पिला छुआ को समस्त घरे भले भी पहुँचंती आ समस्त भी जेमिति दर्शन पाइबे निश्चित पाइबे
3: मो ना है डॉक्टर विश्वजीत महापात्र आज्ञा सी सारा विश्वर

0: चौदह ब्रह्मांडर जे चतुर्दश भुवनर चतुर्दश ब्रह्मांडर जे कर्ता सी हूं बड़ ठाकुर बलभद्र समग्र भुवन मानक शरीर व्यवस्था को आखिगे रखी चौदह प्रकार प्राणी बा जीव बास करती जगतर सकल जीव परागति हूँ चौदह लक्ष्य एवं भेद अनुसार प्रत्येक जीवर चौदह प्रकार गति होता है तेणु भगवान बड़ ठाकुर बलभद्र हाथ में लंगल धरी चौदह माया मोह बंधन को काटा निमंते चौदह चक विशिष्ट जो तालध्वज रथ बा हलध्वज रथ बा लंगलध्वज रथ यही रथ रे विराजमान कर सारे रथ रे जगतगुरु शंकराचार्य दर्शन कर सारे गजपति महाराज चेरा पहरा कर सारे वर्तमान तालध्वज रथ प्रस्तुत हो रही साड़ू निर्देश आसिले भक्त माने टाणी नहीं घोर घर घर नादरे चतुर्दिग प्रकंपित करी आज रथ यही दांडरे गरीब ये दांड हूँ बड़ दांड ये भली दांड पृथ्वी आउ कौटि नहीं दांड तीन किलोमीटर दांड श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर ये दांड एभली भाव नामित से पवित्र बड़ दांड एवं वर्तमान जो बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथर आउ अल्प समय गढ़ प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध शेष पर्यायर उपनीत होता यह रथयात्रार परवर्ती धारा विवरण देवाई मो प्रथम केन्द्र को आपण मानक दे दौर जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ वास्तव रे आज जो यात्रा आषाढ़ श्यामल पक्षे द्वितीया पुष्य संयुते चराचर हिताय अर्थे घोष यात्रा विधीयते ये हूँ से घोष यात्रा जो घोष यात्रा रे समस्त जगतर कल्याण करने निमंते आज से आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि जो द्वितीय तिथि रे महाप्रभु आज प्रावृत रास एठी निजे प्रदर्शित करुछंती बा समस्त आज गोपी गोपांगना मानंग सहित सते जेपरी से द्वापर जुगर प्रावृत रास आज एठारे करुछंती ए सिंह द्वार सम्मुखरे बड़ भाई बलभद्रंक रथरे जो चारि गोटी घोड़ा बा अश्व वर्तमान जोचा सारिलाणी सुंदर भावरे वर्तमान दौड़ी जो बासुकी नामकर रज्जु ताकु मध्य बंधा जाउछि आ घोड़ा जो घोड़ा होउछंती प्रतीक अश्व मनीष जीवनर जो जीवन संसार को जति अधिक रु अधिक आगे नेबा पाई से घोड़ा होउछि एक कर्मर प्रतीक सेइति पाई जतेबेले गजपति महाराज श्रीमंदिर रे प्रभु को दर्शन करबा पाई जाइथांती दक्षिण द्वार दे जाइथांती दक्षिण द्वार रो जे रहिछंती वाहन से होछंती घोड़ा अश्व कहीं ना घोड़ा तार जीवन रे केबे हेले भी सुए नहीं आ जो दिन घोड़ा तले सोई पड़े से दिन तार मृत्यु होता है आ दक्षिण द्वार हूँ अर्थर द्वार गोटे राजा पाई अर्थर आवश्यकता रही तार प्रजार पालन पाई ठीक से हीपरी मनीष जीवन कर्म चंचल होगा घोड़ा पड़ी गति कर ये बड़ भाई बलभद्र कर्मर प्रतीक तांकर जो चारि गोटी घोड़ा बा चारि गोटी अश्व शंख सुचित्र अंगद मेघनाद आ मास जगज्जननी देवी सुभद्रांकर रथर जो अश्व रोचिका मोचिका जीता अपराजिता एवं तांकर जो रथर जो दौड़ी जहाँ होची स्वर्ण चूड़ नामक रज्जु आ बड़ भाई बलभद्र सहित जतेबेले जगन्नाथ रथ को आम तुलना करवाकर अश्व रही कला घोड़ा विपरीत भाव जगन्नाथ होती कला रंग किंतु तांकर घोड़ा बा अश्व हूँ धला बड़ भाई बलभद्र शशांक धवल किंतु तांकर अश्व हूँ कला ठीक से हीपरी जो चारि गोटी जो घोड़ा रही जगन्नाथंकर अश्व ता ज्ञानर प्रत्य भक्तिर प्रतीक जगन्नाथ हूँ भक्तिर प्रतीक बड़ भाई बलभद्र हूँ विश्वास प्रतीक माँ देवी सुभद्रा हूँ ज्ञान जदि ठीक से हीपरि दुई गोटी जो शुक पक्षी आम देखु जो कलश दधि नौते पाखे जो दुई गोटे शुक पक्षी रही बड़ भाई बलभद्रंकर सी हूँ दुईटी शुआ श्रद्धा एवं विश्वास माँ देवीर श्रुति आ स्मृति कहुए ठीक से हीपरि जगन्नाथ रथर दुई गोटी शुआ जहाँ जीव आ परम जी संसार एकमात्र पुरुष।

0: पथ भक्त समस्त आज यही महामेलन मंच रे संसार रूपक बड़दाण्ड रे आज उभाई आज ठिया होती केते दिनर मनर कथा प्रभु को कहिबे हृदय कोली कहिबे हे बड़ ठाकुर बलभद्र तमे घरर मुरबी तमे कलीजुगर ठाकुर तमे आमर दुख बुझ सबु दुख दूर कर दियो यही भावना नहीं
1: बार मास छह ऋतु एवं एक वर्ष अपेक्षा करिछि भक्त कौ दिन आसव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से तिथि को से तार निजर समस्त कार्य को से दूरई देछि एवं मु श्रीक्षेत्र जीवि श्रीक्षेत्र रहिबि श्रीक्षेत्र यही कार्य सब करिबि मु क्षेत्र जीवि यही क्षेत्र को आसवापी तार जो व्याकुलता थिला से वर्तमान से पाई तार प्राणप्रिय ठाकुर को केते कथा मनरे भाभी दौची आउ श्रीमंदिर जो मेघनाद पाचेरी से कड़े कड़े अनेक श्रद्धा भक्त माने ये दिव्य लीला को दर्शन
0: करदाण्डर
1: दुई उभय पार्श्वरे जो कोठा गुड़िक अच्छा सेठारे तल उपर सबु स्थान श्रद्धा माने आबाल वृद्ध वनिता से माने महाप्रभुंकर दिव्य लीला को दर्शन करवरे श्रोताबंधु आपण माने अनुभव करुथिबे ये साधारण जीवन साधारण परिवारर परिवेशरु जेतेबेले वैकुंठ रे आसी सेई परिवारर सदस्य जने पहुंची जाए तार जो आनंद हुए तार जो मनरे जो व्याकुलता सृष्टि हुए सेई कथा ही आज बड़दाण्ड रे देखिबा को मिलिछि संपूर्ण परिपूर्ण बड़दाण्ड केवल मुंड माळ भक्त मानंकर जो प्रतिष्ठा रही आमे महाप्रभु को आग को नेबू आउ वर्तमान टिके ठीक मझी आड़ को आसुचंती बड़ ठाकुर तेणु बड़ ठाकुर पाखरे कोटि कोटि प्रार्थना हे नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय से महाप्रभु बड़वाड़ सामंतंकर से कला रंगर घोटक चारिजण से माने मध्य आश्चर्य होती अरे पगल अरे भक्त माने एमती कहीं पार्श्व देवता माने से माने मध्य आनंदित होती अरे ठाकुर को देखापी एमती तुम हो जे सारथी अच्छा मतली से मध्य अबाकबा हो जाती अरे भक्त मानकर कौन ये भावना समस्त भितर आए आसी रथाधीप महाप्रभु जी बलभद्र आ रामकृष्ण सी तो भक्त को पाई सी मध्य विहोल भाव विहोल हो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा बा कर्तुम से महाप्रभु तुम पाखरे कौन बा असंभव कौन बा असंभव सुंदर भाव
0: केड़े सुंदर भाव घोर घर नाद रे चतुर्दिक प्रकंपित करी श्रद्धालु भक्त माने टाणी नौचंती प्रभु को प्रभुंकर रथ चलुची रथ छुईवाई केते आकुलता केते व्याकुलता भक्त प्राण रे जो सम्मोहन प्रभु को देखिबू प्रभु रथ जो टाणीबू मनस्कामना पूरण करिबू यही जो भाव यही जो श्रद्धा यही जो विश्वास आज सृष्टि बड़ा
1: नजावत उमानाथ पादारविंद भजंती हलोके परे नराणाम नतावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम हे प्रभु जे पर्यंत तुमर चरणारविंद रे आम मन मज्जी न जाई लग्न न होई से पर्यंत आमर मुक्ति काही तेणु उमानाथ हे महारुद्र हे बलभद्र हे रुद्र स्वरूप तुम परम ब्रह्म दारु ब्रह्म तुम चरण रे आमर मति रहू आमर गति रहू आम जीवन सबु समय रे तुमे आशीर्वादर मुद्रा रे आम को अभय मुद्रा रे बरद मुद्रा रे आमको रक्षा करू था।

0: শুনন্তু ভক্তি গীত।
1: सीधे खेतों में जा रहे हैं, उन्होंने बताया। एक हजार छह सौ से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं

0: देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 101.9 ମେଗାହର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗେ। ଏଥର ଜାଣିନେବା ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ଶୁଣିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଗୀତ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସାରଣରେ 6:30 ବିଶେଷ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର ରିଲେ କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ 6:55 ରାତି 7:25 ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ କ୍ରମରେ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ। 7:30 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଷାନ ବାଣୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ପହ୍ଲାଘାରୀର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସନ୍ତୋଷ ସାବତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ପରେ ରହିଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ରାତି 8:10। 8:15 ପ୍ରଚାର କରିବୁ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର 83ତମ ଭାଗ। 8:25 ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ ଭକ୍ତିଗୀତ ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ହିନ୍ଦୀ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଶୁଣିବେ ରାତି 8:30। ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ କଣ୍ଠ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋନୁ ନିଗମ। ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନୁସରତ ବଦର।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

कार्यक्रम विकास मंत्र प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महाराणा उपस्थापना सुकांति महांती आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रस्तुत।

0: सहित एक स्वतंत्र वार्तालाप कार्यक्रम अनुष्ठित कार्यक्रम में जोगदे उपमुख्यमंत्री अंगनवाड़ी कर्मी सहित विस्तृत आलोचना करते समस्या अभियोग भविष्य योजना संपर्क सूचना संग्रह उपयुक्त परामर्श प्रदान करते राज्यर समस्त शिशु और मातृवर्ग सुस्थता तथा उज्जवल भविष्य गठन दिगरे अंगनवाड़ी कर्मी अवदान अतुलनीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा संबलपुर गस्त कर महिला और शिशु विकास मिशन शक्ति जीविका मिशन एवं पर्यटन विभाग विभिन्न योजना और कार्यक्रम विस्तृत समीक्षा कर बैठक में पोषण हिताधिकारी स्थिति शिशु उच्चता ओजन मापर दक्षता अंगनवाड़ी केन्द्र ग्रेडिंग फर्टिफाइड राइस बंटन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आद्विका क्लब सुभद्रा हेल्पडेस्क वन स्टॉप सेंटर शक्ति सदन दक्षता मिशन मिशन बासल्य बेबी पॉइंट आफ्टर केयर होम अग्रगति संपर्क में समीक्षा करते सहित यही सबू योजना गुड़ी तृणमूल स्तर में पहुंचे कड़ाक पालन करने निर्देश देते संबलपुर जिला गंगाधर मंडप जिला शिल्पकेंद्र एवं एमएसएमई विभाग पक्षर उद्यमी ओडिशा एमएसएमई कार्यक्रम अनुष्ठित कार्यक्रम को संबलपुर जिलापा सिद्धेश्वर बलिराम बंदर उद्घाटन करंदिन धरी यह कार्यक्रम चलता जिलार युवपीढ़ी उद्योग स्थापन संपर्कित सचेतनता सृष्टि स्वावलंबी होगा विभिन्न सुजोग और सरकारी योजना संपर्क में सूचना प्रदान यह कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य रही अवसर युववर्गों एमएसएमई पीएमईजीपी पीएमएफएमई आदि योजना संपर्क में सचेतनता कार्यक्रम आयोजित उद्योगी आवश्यक मार्गदर्शन और सुजोग संपर्क में अवगत कर जिला प्रशासन पक्षर जातीय परिसंख्यान दिवस पालित हो चलित वर्ष मूल आभिमुख्य प्रशासनिक तथ्यर सामर्थ्यर उन्मोचन शीर्षक उपरे एक स्वतंत्र आलोचना चक्र अनुष्ठित होता स्थानीय जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में जिला योजना पर्यालोचना कार्यालय संबलपुर आनुकूल्य परिसंख्यान दिवस अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव अतिरिक्त जिलापा सुधांशु कुमार भई जोगदेता बेले सम्मानित अतिथि भाव जातीय परिसंख्यान कार्यालय संबलपुर युग्म निर्देशक राहुल पटेल जोगदे
1: जिला हालचाल आज आसंता जिला हालचाल शुणे सुवर्णपुर जिला संपर्क
2: जिला हलचल रे सुनिले संबलपुर जिला संपर्क रे आकाशवाणी कटक केन्द्र रो आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी बलांगीर केन्द्र रो एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज जोगे प्रचार करुछो चासी भाईंक पई किसानवाणी कार्यक्रम एही कार्यक्रम रो प्रायोजक हेउछंती कृषि और कृषक कल्याण मंत्रणालय भारत सरकार।

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहू छी।
0: पुणी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे छंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिली छी, लंबा फसीबे।
2: 10,00,000 दियंतु, बंची जीबे।
0: सर एते कोठो
2: गोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2,00,000 पठांतु। बाकी परे
0: सर 2,00,000
3: कोन हला बापा
0: जियो, से माने कहू छंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिली छी।
1: अरे
0: काटी देला,
3: पैनिक हुआ नी बाप।

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहूछि।
0: पूनी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे छंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिलिछि, लंबा फसिबे।
2: 10 लाख दियंतु, बंची जिबे।
0: सर एते कोठो
2: गोटे लिंक पठाइछि, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु, बाकी परे।
0: सर 2 लाख
3: कोन हैला बापा?
0: जियो से माने कहउछंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिलिछि।
1: अरे
0: काटी देला,
3: पैनिक हुवानी बापा, डिजिटल अरेस्ट भली किछि नाही, ए सब फ्रॉड।
0: फ्रॉड
3: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधीक फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु, तांकु कोनोसी टंका पठांतु नाही, आउ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदि बुद्धिमता न देखैबे
0: तो टंका हरैबे।
4: आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: ଆଠଟା ବାଜି 45 ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम।

0: होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान

0: 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाली।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके न चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आई।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: wet here.
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। छायागीत कार्यक्रम से लीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: शुणु थिले विविध भारती कार्यक्रम आपण माने कार्यक्रम शुणुछंती आकाशवाणी बलांगीर केन्द्ररु एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ज जोगे प्रचार करुछु हिंदी कथाचित्रर गीत। कार्यक्रमर प्रथम गीतटी तेजाब कथाचित्ररु कंठदान करिछंती अलका याग्निक ओ साथी। गीतिकार जावेद अख्तर। संगीत देछंती लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: मुझे किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बाहर आने तक कथाचित्रर एक दुटी गई अनुराधा पोडवाल ओ मंगल सिंह।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भुर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओं, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें

0: चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
1: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान

0: जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
2: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
2: जी,
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है।
2: हुँ.
4: लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
2: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर।
2: हुँ.
4: ये दो शब्दों से बना है।
2: हुँ.
4: जल और वायु।
2: जी,
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
2: जी,
3: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
2: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
3: जी,
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
3: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
3: जी
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है। पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
2: जी,
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
2: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
3: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: अच्छा
3: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
2: डॉक्टर नमिता
4: जी,
2: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
4: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
3: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी।

0: तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
1: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
2: जी,
1: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
2: अच्छा।
1: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
3: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
3: बिल्कुल।
1: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी।
1: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
3: बिल्कुल।
1: समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
3: जी।
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
3: जी।
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
3: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
1: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
3: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
1: बिल्कुल।
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी।
1: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
3: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
1: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप, इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
3: बिल्कुल।
0: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
3: जी।
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी।
1: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
3: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी।
3: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
5: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं? वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो
2: जी,
1: तुम्हें भी कह रहा हूँ। चलो शाबाश, हाँ गोपाल इसको बोलो, हाँ इधर मेरी तरफ देखिए, हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूँगा मेरे पीछे पीछे दोहराना,
2: जी जी
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं।

0: बापू जी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, ठीक से पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
8: दीदी।
9: बोलो मालती।
8: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।

0: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
1: जी।
0: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
1: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
0: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
3: नमस्ते
4: दीदी। नमस्ते,
3: नमस्ते,
4: नमस्ते,
3: नमस्ते,
5: नमस्ते, नमस्ते बच्चों। नमस्ते
6: दीदी। ये,
5: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
7: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
5: अच्छा
8: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
5: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
6: गुलाब।
5: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
3: दीदी मैं बताऊंगी।
5: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
6: गुलाब।
5: हम्म।
6: गेंदा।
5: हाँ।
6: चमेली। और
5: हाँ,
6: चमेली।
5: चमेली।
6: सूरजमुखी।
5: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
5: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
5: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
5: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं।
2: हम्म।
5: मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
2: बहुत अच्छे।
5: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
2: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
5: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
2: जी।
5: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
2: हल्के नीले रंग के?
5: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
2: अच्छा।
5: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
2: काहे की लिस्ट?
5: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं, इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं, और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
5: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
2: इंदु जी

0: आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
1: देखिए बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
0: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सुनिले NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी बलांगीर। परवर्ती कार्यक्रम हिंदी रे संवाद रिले करूछु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रु। शुणी पारिवे किछि क्षण मध्यरे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़

0: कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: जगबंधु हे गोसाई।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015.